जी हाँ, दुख की रात कितनी भी लंबी हो, अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का उजाला किसी के रोके नहीं रुकता और उस अंधेरे को एक पल में मिटा देता है। कल क्या हुआ था उसे रात के अंधेरे के साथ ही छोड़ दीजिए। आज एक नई शुरुआत का दिन है, क्योंकि जिंदगी जो है ना, जिंदगी सिर्फ महज एक जिंदगी का सफर नहीं है, ये सुहाना सफर है और इसे बनाना आपके हाथों में है।

भोर सुहाने में आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ। आइए अपने मन को शांत करें और आज के दिन की शुरुआत आज के पन्ने पर बहुत ही खूबसूरत विचारों को उकेरते हुए आगे बढ़ें। खुद को दिए 5 मिनट का समय भी आपको पूरे दिन को ऊर्जावान और तनाव मुक्त बना देता है। जी हाँ, जिंदगी के सफर में चाहे आप अकेले हों या आपके साथ आपके साथी हों, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि अपने विचारों के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है।

भोर सुहानी का सफर यहीं तक, रूपा को विदा दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अगले मोड़ पर, अगले मुकाम पर। हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका

0: सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानशेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold bilateral meeting with US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues, including issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Modi asserted that India and the US will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio shared U.S.'s perspective.

ಪದ ಪದ ಗಬರಿಗ ತರಿ ಗಬದ ತರಿಗ ತ.

0: मुक्त भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Rainbow 101.9

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Rainbow 101.9

0: हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसा आपका हाल और चाल? आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद, FM रेनबो 101.9, रेनबो एड कलर्स टू योर लाइफ। दोस्तों, मैं हूं श्रेयत और आज है संडे का दिन, और ये खूबसूरत से गाने आपको इस चीज़ की पूरी याद दिला रहे होंगे कि हाँ, आज संडे है और आज बहुत सारे प्लान्स हैं जो पूरे हफ्ते हम मतलब लिस्ट आउट करके रखते हैं और फिर आज एग्जीक्यूट करने का दिन है उन प्लान्स को। और कभी कभी होता ही हुए हैं कि सुबह सुबह आधे प्लान तो ऐसे ही हवा में उड़ जाते हैं क्योंकि लेट उठते हैं हम, और उसके बाद में हम धीरे धीरे जो है एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, उसमें से 50% हो जाते हैं सक्सीड और अगले 50% जो है अगले हफ्ते, विथ जो होता है ना अगले हफ्ते के 100 के साथ और 50-150% जो है टारगेट हो जाता है। वैसे हमारे साथ एक और होस्ट है, जी हाँ, मैं हूँ, और मेरे साथ आज मालविका है, और हम दोनों मिलकर आज आपको एंटरटेन करेंगे। मालविका, कैसा है आपका संडे?
1: बहुत ही बढ़िया है आज इर्शित। और संडे का दिन है तो संडे की सुबह का अपना ही मूड होता है। ना मंडे का प्रेशर होता है, ना ट्रैफिक का शोर होता है। बस एक हल्की सी हवा और दिल को लगता है कि जिंदगी थोड़ी धीरे चल रही है। और कभी-कभी हमें जिंदगी को धीरे चलना देना भी चाहिए।
0: चाहिए, जी हाँ। हर दिन भागेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? अब वापस तो घर ही आना होता है, इसीलिए धीरे धीरे लाइफ को चलने दें और ये संडे की जो सुबह है इसे धीरे धीरे धीरे धीरे जो है इन्जॉय करें, और इन गानों को इन्जॉय करते अपने जो आज के प्लान है उसकी तैयारी करें, और फिर अगर कहीं घूमने जाना है तो घूमने जाएँ। हम तो स्टूडियो में आ गए हैं क्योंकि हम आपके घूमने में आपके साथ हैं, और आप हमारे गाने इन्जॉय करेंगे, हमारी बातें इन्जॉय करेंगे, और फिर ये जो चीज़ें हैं आपको आपकी डेस्टिनेशन तक एकदम सक्सेसफुली पहुँचाएगी। एग्जैक्टली राइट,
1: करेक्ट।
0: जी हाँ। तो दोस्तों, अभी आपको मैं लेके चलता हूँ एक और गाने के साथ। ये एक गाना है बहुत ही खूबसूरत सा, रुकनी गुप्ता की आवाज़ में, और गाना कहता है रफू, फ्रॉम द फिल्म तुम्हारी सुलु।

0: Well, hello and welcome back. You're listening to Akashwani FM Rainbow 101.9. Well, you know what's interesting about music? Everyone experiences it differently. One song, 10 listeners and 10 completely different stories. For someone, it may remind them of their best friend, for some, their first love, and sometimes it reminds them of their home. That's the beauty of music, isn't it? It becomes your own story. Music finds its way into your life. It becomes your companion. And speaking of companionship, here's a song that reminds us that no matter what happens, someone somewhere is always there for you.
1: क्या बात है, मतलब बहुत मैं भी खो गया तुम्हारी जो तुमने कहा. और यकीन कहा, सच में इन्होंने सही कहा है कि म्यूज़िक सब कुछ है. और म्यूज़िक, अगर कोई इंसान म्यूज़िक से जुड़ जाता है और म्यूज़िक के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो यकीन मानिए उस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं. और गम में भी अगर वो है तो भी वो खुशी में जो है तब्दील कर देता है म्यूज़िक. तो म्यूज़िक को रेस्पेक्ट करते हैं और म्यूज़िक के साथ आगे बढ़ते हैं. आपके अपने आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 पर मैं हूँ श्रेत, और मेरे साथ है माल्यविका. और माल्यविका, ऐसी और भी बहुत सारी बातें तुम लिख कर लेकर आई हो ना, आज पूरी करेंगे.

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो एड कलर्स टू योर लाइफ। मैं हूं श्रेत आपके साथ। और दोस्तों आज एक बहुत ही खास दिन है मालविका, आपको पता आज क्या है?
1: जी हाँ, आज है कॉमनवेल्थ डे।
0: मालविका को सब पता है दोस्तों, आज है कॉमनवेल्थ डे। और ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है बल्कि एक रिमाइंडर भी है दुनिया के अलग अलग देशों को। जी हाँ, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशंस होने के बाद भी हम सब एक डोर से कनेक्टेड हैं। कॉमनवेल्थ में 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ एक फैमिली की तरह जुड़ी हुई है, जहाँ फ्रेंडशिप, पीस, इक्वालिटी और प्रोग्रेस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और सच कहूँ तो हैदराबाद भी इसी स्पिरिट के का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ हर लैंग्वेज, हर कल्चर, हर फेस्टिवल को दिल से सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन हमें ये याद रखना चाहिए कि डाइवर्सिटी हमारी वीकनेस नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ है। चाहे म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो या फिर टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, जब डिफरेंट माइंड्स और डिफरेंट कल्चर एक साथ आते हैं तभी नए आइडियाज़ और बेटर फ्यूचर का रास्ता बनता है ना?
1: जी बिल्कुल। आपको पता है श्रेत भाई कि ये आइडिया शुरू कहाँ से हुआ? सो बेसिकली दिस आइडिया बिगैन मेनी ईयर्स अगो आफ्टर द कंट्रीज दैट वर वंस कनेक्टेड टू द ब्रिटिश एम्पायर चोज टू कंटिन्यू अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन इक्वालिटी, एजुकेशन, पीस एंड डेवलपमेंट। एंड दैट्स वाई दिस डे, कॉमनवेल्थ डे, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इट रिमाइंड्स अस दैट इवन दो कंट्रीज मे बी फार अपार्ट ऑन द मैप, they can still support each other through culture, sports, education and human connections like you said.
0: Yes.
1: Because yes, the world works better when we grow together.
0: क्या बात है, let's grow together। और यकीन मानिए जब हम इस mindset के साथ अपने जिंदगी में आगे चलते हैं ना, तो आप तो तरक्कियों की ऊंचाइयों पर पहुंच ही जाते हैं और आपके आसपास वाले लोग हैं ना, वो भी इसी तरह से आपके साथ साथ वो भी ग्रो कर जाते हैं। तो चलिए अभी हम गानों के साथ साथ ग्रो होते हैं और आपको सुनाते हैं एक और बहुत प्यारा सा गाना। गाना है साहिबा, रोमी और पवनी पांडे की आवाज़ में, और ये गाना बहुत ही प्यारा सा फ्रॉम द फिल्म फिलोरी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने शो FM रेनबो 101.9 पे। मैं हूँ आरजे मालविका। दोस्तों, नेचर यानी प्रकृति के पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है ना। और गर्मी से बचने का एक सिंपल सोल्यूशन है पेड़। एक पेड़ सिर्फ एक पेड़ काफ़ी हो, सिर्फ पेड़ ऑक्सीजन ही नहीं देता, वो हमें ठंडक देता है, चिड़ियों को घर देता है और हम इंसानों को भी सुकून देता है, उसकी हरियाली, उसकी पत्ते, है ना। और अगर नए पेड़ नहीं लगा सकते तो जो पेड़ हैं ऑलरेडी, उनका ख्याल रखिए, उन्हीं को पानी दीजिए, क्योंकि नेचर हमेशा हमारा ख्याल रखती है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका ख्याल रखें।
1: एग्जैक्टली मालविका, अगर जैसे मालविका ने कहा कि पेड़ अगर हम नहीं उगा सकते तो हम जो कट रहे हैं पेड़ या फिर जो पेड़ हमारे आसपास ऑलरेडी उगे हैं उनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। और आप यकीन मानिए मालविका कि आज के टाइम के ऊपर जितने भी लोग हम लोग हैं, हम जब कभी भी हमारे सिटी से दूर जाते हैं, जितना भी कोई ग्रीनरी या फिर किसी जंगल एरिया में जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है यार ये कितना ब्यूटीफुल है, अपना दिल कहता है कि यहाँ पर रुक जाएं। तो सोचिए वो चीज़ हम हमारे आसपास भी कर सकते हैं। अगर हम अपने आसपास अगर झाड़ पेड़ पौधे उगाएंगे तो ग्रीनरी वहाँ की अपने पास भी हो जाएगी। हाँ, थोड़ा रोड्स हैं, कंक्रीट अपने पास हैं, बोलते हैं कंक्रीट जंगल में हम लोग रहते हैं, पर इसको हम ग्रीन जंगल में बना सकते हैं। एकदम जंगल ना बनाए, एटलीस्ट आपके आसपास के एटमॉस्फेयर को ऐसा कर लें कि ग्रीनरी आपको जब कभी आप उठें सुबह हो तो आपके घर के सामने दो पेड़ लगे हुए दिखें और उन पेड़ों पर कुछ फ्रूट वाले पेड़ हैं। जैसे मेरे घर के पास में एक आम का झाड़ है, तो आता जाता इंसान कभी उधर से कैरी तोड़ने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसा कुछ स्पेशल करें जिससे कि एक मेमोरी भी आपके आसपास बनी रहे। तो पेड़ उगाएं और ग्रीनरी लाएं और अपने आपको तो स्वस्थ रखें और जो नेचर है उसको भी आप हैप्पी रख सकते हैं इन छोटी छोटी एक्टिविटीज के जरिए। चले अभी इन गानों के जरिए हम आपको हैप्पी करने की कोशिश करते हैं। एक हैप्पी वाला सॉन्ग तो हमने चला दिया, अभी चलते हैं द हार्ट वॉन्ट्स वॉट इट वॉन्ट्स, मतलब जो दिल चाहता है वही चाहता है। क्या चाहता है दिल, क्या चाहता है
0: दिल, क्या चाहता है
1: दिल वही चाहता है जो दिल चाहता है। मैंने ना जो गाना अभी बोला था वो ऑलरेडी हमने बार बार चाहने के चक्कर में एक बार और लगाने की कोशिश की, पर कोई बात नहीं, वो गाना हो चुका है। अब आप सुन रहे हैं यू बिलोंग विथ मी बाय टेलर स्विफ्ट।

वेल दोस्तों, ये गाने इतने कमाल के होते हैं कि हम बस इसमें खो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि एक गाने को मैं 2 बार या 3 बार सुनना चाहता हूँ। पर यहाँ पर रूल है कि एक गाना एक ही बार चलाना चाहिए, तो हमने आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन गाने लाने की कोशिश की और हम आपको सुना रहे हैं। वैसे घड़ी में वक्त हो गया है 10:57:37, दैट मीन्स कि अब हमको जाना है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के साथ एक बहुत ही कमाल का कार्यक्रम है जो कुछ ही देर में ठीक 11 बजे आपके रेडियो सेट्स पर आप सुन पाएंगे। मैं हूँ श्रेयत और मेरे साथ है मालविका, और हम दोनों मिलकर आपको कर रहे हैं फुल टू एंटरटेन आपके अपने आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 पर। शो है नमस्ते हेलो आदाब। अभी चलते हैं इस गाने के साथ।

0: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया था फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को प्रेरित किया कि हम वन्य जीवों के बारे में जानें, इन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में जानें। तो आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का उल्लेख किया है।
1: साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती हैं। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूं। इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहां की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहां आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यही घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं, इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं। इससे टकराव कम हो रहा है और लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। साथियों, मध्य भारत से भी एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे हैं। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसे ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी घोड़ावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी, ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं, तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है।
0: प्रधानमंत्री जी के इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए जानते हैं कि इन वन्य जीवों की, इन पशु पक्षियों की जीवन शैली कैसी होती है और इनके संरक्षण के लिए क्या विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं एक परिचर्चा। हमारे विशेषज्ञ हैं श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग, गुजरात राज्य से, और श्री आयु

0: पीयूष वर्मा जिला वन संरक्षक कच्छ ईस्ट डिवीजन वन विभाग गुजरात राज्य। इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री हितेश मावाणी वरिष्ठ प्रसारण कर्मी।
1: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अप्रैल 2026 मन की बात में गुजरात, कच्छ और खास करके उन्होंने फ्लेमिंगो सिटी, फ्लेमिंगोस और साथ ही में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको यहाँ गुजरात में घोराट के नाम से जाना जाता है, वो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जिक्र किया था, उल्लेख किया था। आज उसी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित है और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी उपस्थित है। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी की ओर से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।
2: नमस्कार श्रोता मित्रों।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो हम बात यही करेंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने मन की बात में फ्लेमिंगो सिटी का जिक्र किया, साथ ही में फ्लेमिंगोस के बारे में भी बताया। तो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में फ्लेमिंगोस को लाखा जी के बाराते ऐसा शब्द से नवाजा था, तो ये लाखा जी के बाराते क्या है सर?
2: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कच्छ प्रदेश प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो, जिसको सुरखाब भी हम लोग कहते हैं, आते हैं हर वर्ष और यहीं पे अपना प्रजनन करते हैं। वहाँ पे एक एक पूरा जो है अंडा दे के बच्चे पैदा करके और बच्चे बड़े होने तक कच्छ में रहते हैं। और जब ये सुरखाब मीन्स फ्लेमिंगो जब ये कच्छ के रण में जब आते हैं तो वो पूरा कच्छ की धरती एकदम गुलाबी और सफेद रंग से भर जाती है। तो उसी को देखते हुए जो हमारे यहाँ के जो भरवाड़ लोग हैं, जो पशुपालक हैं, उनकी एक जो ड्रेस होती है वो वाइट कलर की ड्रेस होती है और उसमें जब उन बारात के टाइम में, शादी ब्याह के टाइम में जब वो गुलाल वगैरह छिड़कते हैं तो पूरा गुलाबी और वाइट का एक कम्बिनेशन होता है। उस कम्बिनेशन को देखते हुए यहाँ इनको लाखा जी के बाराती कहकर भी बुलाया जाता है।
1: ये तो बहुत खूबसूरत बात है, फ्लेमिंगोस को यहाँ गुजरात में लाखा जी के बाराती के नाम से भी नवाजा जाता है। डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि ये जो सुरखाब फ्लेमिंगोस की आपने बात बताई, तो गुजरात के सिर्फ ये कच्छ जिला में ही आते हैं?
2: नहीं, एक्चुअली जैसे हम जानते हैं कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो मध्य एशिया का पूरा फ्लाईवे है, तो प्रवासी पक्षी पूरे साइबेरिया और रशिया और इधर से पूरे मतलब सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेटरी रूट का एक ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है और पूरा जो एक अनुकूल वातावरण भी कच्छ के पूरे रण क्षेत्र में रहता है। और जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि बहुत पक्षीविद भी यहाँ आते हैं, ऐसे डॉक्टर सलीम अली भी यहाँ बहुत टाइम पर तक रहे और अभी भी सर्दी के टाइम में जब प्रवासी पक्षी और ये सब रहते हैं तो पूरे कंट्री से, पूरे देश से बहुत सारे पक्षीविद और जो जिनको बर्डिंग में रुचि रहती है वो यहाँ आते हैं। तो ये एक इनका एक टेम्परेरी रुकने का एक स्थल है कच्छ का रण, उसमें ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हैं, हैबिटेट ऐसा है तो काफी टाइम तक यहाँ रहते हैं। और खास करके जब ये फ्लेमिंगो आते हैं तो उनको ब्रीडिंग के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड यहाँ पे उपलब्ध है जो पूरे दक्षिण एशिया में कहीं नहीं है। वो यहाँ पे ऐसा एक पूरा ब्रीडिंग ग्राउंड है और यहीं आके ये ब्रीडिंग करते हैं। और ये पूरा जो माइग्रेटरी रूट है वो हिंद महासागर तक जाता है, उसमें देश के अन्य भागों में भी ये जाते हैं, पर बहुत ज्यादा समय जो कच्छ के रण में ये रहते हैं और गुजरात के अन्य भागों में भी ये, जैसे नड़ाबेट का विस्तार है उसमें रहते हैं, फिर लिटिल रन ऑफ कच्छ जो कच्छ का छोटा जो रण है उसमें भी रहते हैं, फिर जामनगर के विस्तार में रहते हैं, पोरबंदर के विस्तार में जाते हैं, नल सरोवर में जाते हैं। तो अपने यहाँ पे गुजरात में खूब सारी वेटलैंड्स हैं और जो जो वेटलैंड्स में अनुकूल वातावरण इनको रहता है वो सभी में ये समय समय पर जाते हैं। तो कुछ समय कच्छ में रहेंगे, कुछ दूसरे भागों में जाएंगे, देन अपने माइग्रेटरी रूट के हिसाब से आगे जाते रहते हैं एंड देन जब रिटर्न होते हैं तो भी उनका वही सेम रूट रहता है।
1: आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया, कच्छ के भाग में ये विशेष करके आते हैं फ्लेमिंगोस, माइग्रेटरी बर्ड्स। कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है।

0: डॉक्टर जयपाल सिंह का कोई पर्टिकुलर सीजन रहता है इनके यहाँ कच्छ में और गुजरात के अन्य भाग में जो माइग्रेटरी बर्ड्स रुकते हैं, खास करके फ्लेमिंगोस?
1: हाँ, ये बड़ा एक स्पेसिफिक सीजन रहता है यहाँ। जैसे अभी हम लोग देखेंगे गर्मी की ऋतु में यहाँ पे पूरा रण जो है वो सूखा होता है, उसमें एक सोल्ट पेन जैसा रहता है पूरा, और जैसे ही बारिश होती है तो वो पूरा रण जो है एक पानी से भर जाता है, जो छिछरा पानी होता है, बहुत गहरा पानी नहीं रहता है, और वो छिछरा पानी जो है वो इसके फ्लेमिंगो के रुकने के लिए खूब अनुकूल है, और उसके ब्रीडिंग के लिए आसपास में जो मिट्टी के कुछ टीले वगैरह होते हैं और एक ऊपर का जो भाग है वो बहुत अनुकूल होता है, इसलिए जो है ये इस एरिया में आके रुकते हैं। और खूब बड़ा प्रदेश जो इनको मिल जाता है, बड़ा क्षेत्र मिल जाता है जिसमें अनडिस्टर्ब मीन्स वहाँ पे कोई दूसरे व्यवधान नहीं है, कोई दूसरी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई घर और गांव नहीं है, ऐसा एक बड़ा सुंदर वातावरण का निर्माण यहाँ पे रहता है, तो उस वजह से ये यहाँ आके रुकते हैं।
0: तो डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने जैसे बताया कि उसको एक बहुत सुंदर वातावरण मिलता है, तो ये जो इनका नेस्टिंग ग्राउंड्स है वो मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है
1: ये
0: कच्छ के
1: तो
0: बाहर?
1: ऐसे कहेंगे तो हम लोग

0: जैसे कि ये तो हजारों हेक्टेयर विस्तार में है, पूरा जो नेस्टिंग ग्राउंड और जहाँ आके रुकते हैं, और जो मतलब सैकड़ों हेक्टेयर विस्तार ऐसा है जिसमें ये आके अंडे देते हैं। और जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके बाद इनका आना शुरू हो जाता है जुलाई अगस्त से, फिर अपना अंडा देते हैं, फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, और देन ये फिर जो है आगे माइग्रेट करना शुरू करते हैं अलग अलग जगह।
1: जैसे कि आपने बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो मतलब इनका माइग्रेशन रूट कितना रहता है?
0: माइग्रेशन रूट तो इनका हजारों किलोमीटर होता है, जैसे साइबेरिया से आते हैं और पूरे जो है अपने हिंद महासागर के क्षेत्र तक जाते हैं, इवन चिल्का लेक और इस एरिया तक भी ये जाते हैं, और पूरे साउथ इंडिया में भी इनका विस्तरण रहता है। तो ये पूरा एक माइग्रेटरी रूट, काफी बड़ा इनका माइग्रेटरी रूट है।
1: श्रोताओ, हमारे साथ साथ आकाशवाणी स्टूडियोज में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित हैं। आयुष जी, आप बताएंगे कि कच्छ में कौन कौन से लोकेशन में फ्लेमिंगो सुरखाब है वो पाए जाते हैं, पॉपुलेशन में उसकी पाई जाती है?
2: नमस्ते श्वेता मित्रों। कच्छ एक अनुकूल प्रदेश है फ्लेमिंगो के लिए, एंड जैसा साहब ने बताया भी, तो यहाँ काफी विस्तृत विस्तार में ये मिलते हैं। बट जो अभी जो मेन ट्रेडिशनल एरिया की अगर हम बात करें, तो एक फ्लेमिंगो सिटी करके जगह है जिसको अंडा बेट के नाम से भी कहते हैं, उसे पिंक सिटी भी कहते हैं। एंड ये डिस्कवर किया गया था सन 1886 में, उस समय के जो महाराजा थे उस टाइम पे उन्होंने वो डिस्कवर किया था।
1: कच्छ
2: फिर
1: के महाराव ने
2: जी, फिर महाराव खेंगार थ्री, इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, एंड डॉक्टर सलीम अली साहब ने फिर 40 और 50 के दशक में यहाँ पे काफी भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि ये एक नायाब जगह है फ्लेमिंगो के लिए। उसके अलावा अभी हाल में कूडा करके एक जगह है, वहां पर इनका काफी डिपार्टमेंट ने भी इंटरवेंशन किया जिसकी वजह से वहां सक्सेसफुल इनका प्रजनन होता है, जिसकी वजह से वहां पे भी असंख्य मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट प्रवासियों के बारे में मैं बात करूं तो जब हम रोड टू हेवन से प्रसार करते हैं तो उसके दोनों तरफ फ्लेमिंगो जो मौसम होता है तो देखने को मिलते हैं।
1: सबसे पहले तो श्रोता को हम बताएंगे कि ये रोड टू हेवन क्या है।
2: जी, रोड टू हेवन हमारा खावड़ा वाले एरिया से जो ढोलावीरा को कनेक्ट करता हुआ एक्चुअली एक रोड है जिसे कहते हैं रोड टू हेवन, या फिर कह सकते हैं रोड ऑफ हेवन। इसके जैसे नाम से ही प्रस्तुत होता है, तो ये कहते हैं कि जन्नत की सैर आप कर रहे हैं। ये इसका महत्व इसीलिए है कि आप देखिए, जिस समय पानी सूखा हुआ होता है तो नमक की एक सफेद चादर होती है, आपको लगेगा जैसे आप आकाश में विचर रहे हैं। जब पानी भरा होता है तो यहाँ पे विभिन्न माइग्रेटरी बर्ड, जिसमें मुख्यतः आपका फ्लेमिंगो सुरखाब वो होता है, तो सफेद और गुलाबी रंग से वो पूरा का पूरा ढक जाता है। तो ये देखने में क्योंकि इतना बेहतरीन लगता है, इतना मोहक लगता है, इसीलिए इस रोड से प्रसार करते समय लोग इसे कहते हैं कि रोड टू हेवन है।
1: और साथ में हम ये भी बता दें कि ये रोड टू हेवन है वो अभी अभी ही मतलब पिछले चार
2: जी
1: पांच साल से ही पब्लिक के
2: जी
1: लिए ओपन किया गया
2: वेरी
1: है,
2: ट्रू
1: जिसके दोनों साइड समंदर का पानी भरा हुआ रहता है। और जैसे कि आयुष वर्मा जी ने बताया, तो जब आप ट्रैवल करते हैं धोलावीरा से खावड़ा, तो ये आपको लगता है कि इट्स ए रोड ऑफ हेवन। आयुष जी, आपने ये बताया तो हम श्रोता मित्रों को साथ में ये भी बताया, एक बार जो उसका फ्लेमिंगोज है उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हो सकता है?
2: जी अगर मैं कच्छ की खाली बात करूं तो पिछले 5 वर्ष में जो हमारा एक अनुमान है वो ये है कि 3 से 4 गुना फ्लेमिंगो की संख्या बढ़ गई है, एंड हाल में ये संख्या अंदाजे 3 से 4 लाख, हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी इसको कह सकते हैं। यही संख्या जस्ट 2020 में 1 लाख के आसपास थी। और ये भी गौरतलब है कि जब ये फ्लेमिंगो की हम बात करते हैं तो दोनों ग्रेटर फ्लेमिंगो एज वेल एज लेसर फ्लेमिंगो दोनों यहां पर आते हैं।
1: अच्छा आयुष जी, तो ये ग्रेटर फ्लेमिंगोस और लेसर फ्लेमिंगोस, इसमें मतलब डिफरेंस क्या है, तफावत क्या है?
2: जी, तो आपको अगर मैं फिजिकल डिफरेंसेस से बताऊं तो सर्वप्रथम तो जैसे ग्रेटर और लेसर है तो साइज में फर्क आपको दिखेगा। जनरली जो एक एडल्ट ग्रेटर फ्लेमिंगो है उसकी हाइट होती है 110 से लेके 150 सेंटीमीटर एवरेज, जबकि हमारा जो लेसर फ्लेमिंगो होता है वो 70 से लेके 95 सेंटीमीटर तक का होता है। तो एक तो साइज में डिफरेंस होता है, दूसरा लेसर फ्लेमिंगो जो है आपका वो काफी गुलाबी दिखेगा, एज कंपेयर टू ग्रेटर फ्लेमिंगो. ग्रेटर फ्लेमिंगो भी गुलाबी है लेकिन वो सफेद और ग्रे

कलर का ज्यादा है। इनफैक्ट ये भी एक मजेदार बात है कि ये उनका बॉडीली अडेप्टेशन है। कैसे, एक ये जो हमने बात करी कि रण क्यों सूटेबल है, तो जैसा हॉफ साहब ने बताया, यहां पर शैलो वाटर तो है ही। शैलो वाटर की वजह से क्या होता है, एल्गे, क्रस्टेशियंस, डायटम्स, और ये उनकी मेन खुराक बनती हैं फ्लेमिंगोस की। जो हमारे लेसर फ्लेमिंगोस होते हैं वो सरफेस फीडर्स होते हैं, स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसको कंज्यूम करने की वजह से इनका जो कलर है वो गुलाबी आता है।

0: है गुलाबी, वो ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से आता है। तो लेसर फ्लेमिंगो इसको ज्यादा कंज्यूम करती है और ग्रेटर फ्लेमिंगो इसको कम कंज्यूम करती है। तो आप देखिए प्रकृति में कैसे एक वातावरण से हमारी पूरी मतलब हमारी तो वही साथ साथ पक्षियों की भी एक पूरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होते हैं।
1: मतलब सर ये तो हम बोल सकते हैं कि ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है, जिसे ये लेसर फ्लेमिंगोस और ग्रेटर फ्लेमिंगोस है, उसका एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन अलग अलग रहता है। डॉक्टर जयपाल सिंह, ये जो बताए फ्लेमिंगोस सुरखाप की संख्या, तो ये सुरखाप की संख्या उसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन काउंट के पद्धति कौन कौन सी रहती है?
2: ये जैसे फ्लेमिंगो को जो बर्ड सेंसस का भाग हम लोग मानते हैं, और वो मोस्टली जो है डायरेक्ट काउंटिंग होता है, उसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट भी हम लोग यूज़ करते हैं, और उसमें बहुत सारे जो पक्षीविद हैं उनको हम लोग साथ में रखते हैं, साथ में बहुत कुछ एनजीओज रहते हैं, कुछ हमारे बर्डर्स रहते हैं जो इसका मतलब कंटिन्यूअसली हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, उनको साथ में रख के हम उसका डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं। पर जैसा कि हम देखें कि एक एक को काउंट करना तो बड़ा मुश्किल होगा, बट उसको हम जैसे इस इक्विपमेंट्स के माध्यम से उसके कुछ सैंपल करके और उनको देन मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो अंदाजित उसकी जो संख्या है उसका हम लोगों को पता चल जाता है।
1: श्रोताओ, फ्लेमिंगो सुरखाप की विशेष जानकारी तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमें डॉक्टर जयपाल सिंह आप अपनी पसंदगी का एक गीत भी बताइए।
2: जैसे रहे ना रहे हम महका करेंगे, ये एक बड़ा सुंदर गीत है।
1: बिल्कुल प्रस्तुत है श्रोताओ आपके लिए डॉक्टर जयपाल सिंह की पसंदगी का यह गीत।

0: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 इस कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए डॉक्टर जयपाल सिंह से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुरखाब फ्लैमिंगोस की पॉपुलेशन एस्टिमेशन होती है तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं गवर्नमेंट के अलावा?
1: जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टाफ तो उसमें रहता है, पर उसमें जो काफी सारे पक्षीविद हैं, काफी जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं वो सब, और बहुत सारे बर्डर्स हमारे गुजरात में, खास करके बहुत बड़ा बर्डिंग कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तो जिनको काफी रुचि रहती है पूरी बर्ड लाइफ में, तो वो साथ में रह के हम लोग एक अपना प्लान करते हैं, फिर उन सबको इनवाइट करते हैं, उनको सबके साथ रह के वो एक जो इनकी गिनती पक्षियों की है उसका कार्य हम लोग करते हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, ये फ्लेमिंगोस के पॉपुलेशन सेंसस हर साल होता है या कोई पीरियडिकल रहता है?
1: वैसे तो हम लोग हर 4 साल में एक बर्ड सेंसस का आयोजन करते हैं, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में जो विविधताएं होती हैं तो स्टाफ अपनी तरफ से भी हर साल वो पक्षी गिनती करने का कार्य करता है। जैसे कि नड़ावेट विस्तार है, उसमें अलग से अपना स्टाफ जो है वो एक अपना गिनती का कार्यक्रम रख लेता है, इसी तरह से नल सरोवर में रख लेता है, तो उससे पक्षियों की संख्या का अंदाजा हम लोगों को आता रहता है और डिफरेंट जो वैरायटी के बर्ड्स हैं उनकी भी संख्या का पता चलता रहता है। तो कभी कभी जैसे नल सरोवर जैसे विस्तार में कुछ अन्य विलक्षण पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं जो जनरली माइग्रेट करके आए होंगे, पहले नहीं देखे गए हैं, बट कभी पिछले साल में भी ऐसे एक दो पक्षी देखे गए थे, और फिर नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि वही सेम पक्षी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
0: आयुष जी, जैसे कि आपने बताया कि जो कच्छ के महाराव थे महाराजा खेंगार जी, उन्होंने विश्व के समक्ष ये फ्लेमिंगो सिटी अंडाबेट का उजागर किया, ऐसे ही फिर बाद में सलीम अली जी ने भी जिक्र किया फ्लेमिंगोस का, तो मतलब जो एक ये पूरा नेस्टिंग कॉलोनी का एक फोटोग्राफ विश्व में प्रसिद्ध हुआ था
2: जी,
0: उसके बारे में आप बात करेंगे?
2: जी, तो ये जब फोटोग्राफ पॉपुलर हुआ, आज के शब्दों में बोले शब्दावली में जब वायरल हुआ, तो लोगों में काफी उत्सुकता जागी कि ये यहाँ पर हैं तो क्यों हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में यूं तो मतलब ये सब चीजें क्या हैं आप देखिए, तो ये जो टेक्स्ट बुक्स में चीजें थी वो लेसन अभी आम जनता के समक्ष एक आ पाता है इसकी वजह से। अगेन इससे ये भी था कि जब यहाँ पे संख्या ज्यादा देखने को मिली तो इसको और कैसे बढ़ा सके, इनके कंजर्वेशन के लिए हम काम क्या कर सकते हैं, ये एक डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तरीके थी। तो इसी चीज से प्रेरणा लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूडा करके एक हमारा स्थल है, इनफैक्ट उसको एक कुदरती संरक्षण ऐसे भी मिलता है कि वो हमारे कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ बीएसएफ का एक आउटपोस्ट है जो उसके आगे है, तो एक एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस मतलब मानव से थोड़ा सा वो आइसोलेटेड है। वहां पर हमने पिछले 5 वर्षों से डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि हम वहां पे अर्दन माउंड्स बनाए और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर जो फ्लेमिंगो है वो अपना अंडा ले डाउन कर सके। मैं जस्ट एक उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां पर इवन दो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में लाई करते हुए इंडिया में बहुत सारे पार्ट हैं, थाने में हमारा

0: की काफी सारे देखने को मिलती है काउंट, पुलिकेट लेक में आपका उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, बट जो ब्रीडिंग है वो यहाँ कच्छ में काफी ज्यादा संख्या में होती है। हमने इसमें एक चीज ये देखी वहां पर कि अंडे जो ये ले डाउन करते थे अपने, वो रण विस्तार में पानी भर जाने के कारण उस अंडे का धोवाण बहुत ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल उसका ब्रीडिंग नहीं हो पाता था।
1: मतलब जो कुदरती परिवर्तन के हिसाब से
0: जी
1: फ्लेमिंगोस के अंडा कम होते जा रहे थे।
0: मैं ये नहीं कहूंगा कम होते जा रहे थे, बट ये चौमासे के समय में जब यहाँ पे आते थे और अंडा ले डाउन करते थे तो वो अंडा धुल जाता था। अभी जब डिपार्टमेंट ने ये कुछ अर्दन माउंड्स बनाए सी शेप, हम उसे डेजर्ट पॉन्ड कहते हैं, तो लीनियर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो इसपे वो जब अपना अंडा ले डाउन करते हैं वो अंडे का जो धोवाण है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रजनन बहुत सक्सेसफुल हो पाया है। तो एक बड़ा कारण है कि क्यों फ्लेमिंगो की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
1: आयुष जी, जैसे आपने बताया कूडा सेट के बारे में, तो हम श्रोता मित्रों को यह भी बताएं कि ये कूडा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मानव बस्ती बिल्कुल नहीं है
0: जी
1: और उसको मतलब कुदरती संरक्षण मिल रहा है।
0: जी
1: आयुष जी, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ में आपकी पसंदगी का एक गीत भी आप बताइए।
0: छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।

0: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ के फ्लेमिंगो सिटी, लाखा जी के बाराते और उसके साथ ही साथ गुजरात में जिसको घोराड के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, उसका भी जिक्र किया था, उल्लेख किया था। तो उसके संलग्न माहिती के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयपाल सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और गुजरात राज्य वन बल प्रमुख है, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित है। डॉक्टर जयपाल सिंह, हम श्रोता मित्रों को ये बताएंगे कि जो अभी घोराड द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, उसकी संख्या गुजरात में कितनी रह गई है, और जो एक IUCN की कैटेगरी होती है उसमें उसका क्या स्टेटस है?
1: श्रोता मित्रों, जो घोराड हम लोग गुजराती में कहते हैं उसको इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, और राजस्थान में उसको गोडावन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक IUCN की कैटेगरी में, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ही कम रह गई थी, तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लुप्त प्राय श्रेणी में इसको रख दिया गया है, क्योंकि जो है इसका प्रजनन कुछ कारणों से काफी कम हो गया था और संख्या लगातार घटती जा रही थी। जैसे हम यहाँ गुजरात की बात करें तो यहाँ केवल 4 पक्षी जो केवल मादा हैं वही रह गए हैं, और राजस्थान में इसकी संख्या अभी थोड़ी बढ़ गई है और अभी करीब करीब 150 से 200 के बीच में कुदरती वातावरण में ये पक्षी हैं। उसके लिए काफी सारे प्रयास भी राज्य सरकारों ने किए हैं केंद्र सरकार के सहयोग से। ये एक प्राथमिकता का कार्यक्रम है कि ये, क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशीज है जो लुप्त होने के कगार तक पहुंची, उसको कैसे हम फिर से पुनर्वसन कर सकें और पूरे जो है जिस एरियाज में ये प्रजाति पाई जाती है उनमें फिर से ये प्रजाति दिखने मिले। दूसरा जो है कि ये एक जो GIB के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक काफी बड़े आकार का पक्षी होता है, बहुत ऊंची उड़ान नहीं भरता है और मुख्य रूप से ये घास के मैदानों में ही रहता है, और इसका जो अंडा भी जो देता है वो भी ग्राउंड पे ही देता है, कोई पेड़ पे ये कभी नहीं चढ़ता है, वो ये घास के मैदान में रहेगा, वहीं प्रजनन होगा और वहीं से जो है इसके बच्चे पैदा होके वहीं पे ये बढ़ेगा। तो जो दूसरे कुछ परिबल जो रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में, उन परिबलों में थोड़ा सुधार हो तो इसकी प्रजाति को हम फिर से बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, जो कि अब हम लोग हो रहे हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, साथ में हम ये भी बताएं कि ये जो घोराड है इसकी संख्या दिन ब दिन क्यों कम हो रही है?
1: इसकी संख्या कम होने के काफी सारे कारण हैं, क्योंकि घास के मैदान काफी विस्तारों में कुछ कम हो गए, तो जो हैबिटेट लॉस हम उसको कह सकते हैं वह हुआ। उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे परिबल के कुछ शिकारी प्राणी उस विस्तार में बढ़ गए, छोटे शिकारी जिनको कहते हैं, के जैसे गीदड़ है, तो फोक्स है, इस तरह के नेवला है, इवन जो थोड़े पक्षी शिकारी पक्षी हैं वो भी, तो उनके कारण भी जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा खतरा रहता है, और कुछ अन्य परिबल, बरसात का ज्यादा होना, चक्रवात वगैरह हैं, कुदरती अन्य परिबल भी इसके कारण है। साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके, वो भी एक कुछ हद तक एक कारण होता है कि उससे डिस्टर्बेंस वो एरियाज में होता है, तो वो भी एक उसका कारण होता है।
0: कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: श्रोता मित्र, हमारे साथ कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी जी उपस्थित है। आयुष जी, आप ये बताइए कि घोराट की जो संख्या है उसके बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या प्रयत्न है?
1: केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रयासरत हैं कि हाल में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमारा घोराड़ है, जैसा साहब ने बताया, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो। तो एक ध्यान देवानी जो बात है कि अभी जो कच्छ में मौजूद घोराड़ हैं, ये सब मादा हैं, इसलिए इनका प्रजनन एक बड़ी समस्या रही थी टू स्टार्ट विद। इनफैक्ट ये एक नोंदनीय बात है कि सरकार के प्रयासों को आप इससे आकलन कर सकते हैं कि एक डेडिकेटेड ग्रेट इंडियन बर्ड सेंचुरी है हमारे। तो अभी यूं तो कई बार प्रयास किए गए हैं, बट अभी हाल में जंप स्टार्ट टेक्निक ब्रीडिंग की एक हमारी टेक्निक है जिसको हमने इसके प्रजनन के लिए उपयोग किया। इसमें इफेक्टिवली क्या होता है कि एक आर्टिफिशियली

0: इंसेमिनेशन से जो अंडा होता है वो अंडा राजस्थान से लाया गया और यहाँ पर जो मादा घोराड़ हैं तो उनसे उनको इंक्यूबेट कराया गया। और ये भी एक काफी दिलचस्प बात है कि एक मादा अपने अंडे को पहचानती है, इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल दिखने जैसा अंडा रखा जाए और उसकी नॉलेज के बाहर रखा जाए।
1: आयुष जी, ये आपने बताया कि राजस्थान से अंडा लाया गया है, तो राजस्थान से अंडा लाने वक्त कौन कौन से सावधानियां रखनी पड़ती है?
0: जी, ये बहुत ही क्रिटिकल एक एस्पेक्ट होता है टेक्निकली अगर हम बात करें, क्योंकि आप देखिए ये अंडे का जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इसमें वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो पूरा सर्टिफाई करते हैं, वो ये भी बताते हैं कि किस परिस्थिति में इसको स्टोर करके लेके जाना है और किस परिस्थिति में इसे रिसीव करना है। इसका प्रॉपर पूरा जो वेटरनरी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं इसको बेचते समय भी और इसको प्राप्त करते समय भी। इनफैक्ट सीजेडए की काफी टेक्निकल गाइडलाइंस भी हैं इसके बारे में, तो हमें काफी इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है हर तरीके से इसके लॉजिस्टिक्स में।
1: और जैसे कि आपने बताया कि मादा के पास जो अंडा है अपना, वो हमें लेना पड़ता है, और जो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से प्राप्त हुआ है अंडा, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि मादा के उसी वक्त अंडा के आसपास हाजिरी नहीं होनी चाहिए,
0: जी,
1: तो ये कैसे फिजिबल होता है?
0: तो फील्ड स्टाफ बहुत पैनी नजर रखता है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व भी किया जाता है कि उस जो हमारा घोराड़ है उसका पैटर्न क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है। जैसे वो एक स्थान से अभी जाके अपने घास विस्तार में जाए तो किस समय जाती है और वो कब लौटती है, तो ये सब विंडो बेसिकली विंडो ऑफ टाइम हमारे जो फील्ड का स्टाफ है उसने पैनी नजर रख के ये एक्सरसाइज करी।
1: ये तो काफी मतलब फील्ड स्टाफ के प्रशंसनीय बात आपने बताई।
0: धन्यवाद।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह साथ में बताए थे कि ये जंप स्टार्ट टेक्निक है, ये उसका इंडिया में प्रथम बार प्रयोग किया गया गुजरात में, कच्छ में।
2: नहीं, इसमें मैं फिर से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भारत सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और खास करके दो राज्य सरकारें अभी ये हाल में राजस्थान और गुजरात, इनका एक संयुक्त कार्यक्रम है और ये एक नेशनल प्रोग्राम तरीके भी लिया गया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले साल शासन में जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग की थी उसमें भी इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इस पे भार दिया था, और उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम को बहुत ही हम लोग सावचेती से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें दो तरह के जो प्रजनन कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, एक है कि कुदरती तरीके से कि इन सीटू ब्रीडिंग, तो इन सीटू में दो चीजें होती हैं, एक तो जो मतलब ब्रीडिंग नेचुरली जो हो रहा है इस विस्तार में, जो भी विस्तार में, उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसको कंडीशन ऐसी दें कि जो बच्चे नए जन्मते हैं तो वो सर्वाइवल उनका बढ़े। और दूसरा मेथड है जो जंप स्टार्ट मेथड, ये भी एक टेक्निक है कि सीधा जो बच्चा जो है, हम लोग जैसे आयुष ने बात किया कि अंडा हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो नए जो बच्चा जो उससे पैदा होता है तो उसका सीधा वाइल्डिंग हो जाता है। अदरवाइज जैसे हम लोग प्रजनन केंद्र कृत्रिम में हम लोग करें तो उसको वाइल्ड करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, जो उसका एक ह्यूमन इम्प्रिंट अगर उस पक्षी पे है तो वाइल्डिंग होना उसका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हम दो तरह के प्रयास है, उसका इन सीटू कंजर्वेशन भी चल रहा है और एक्स सीटू भी चल रहा है। एक्स सीटू में भी काफी अच्छी जो प्रयास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। और जैसे बात करूं तो इसी साल में कुल नए अभी तक 14 बच्चे इसमें जन्मे हैं जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है उसमें,
0: बहुत खूब, बहुत
1: और
0: बढ़िया।
1: कुल संख्या अभी जो केंद्र में है 84 हो गई है। तो वो जो एक क्रिटिकल लेवल के जो पक्षी का हम लोगों को जरूरत है, जिस तरह से ये कम होता जा रहा था, तो ये साथ में इस कृत्रिम के साथ जो हमारा प्राकृतिक के साथ में कृत्रिम प्रजनन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो उसमें अभी एक अच्छा नंबर संख्या जो हमारे पास उपलब्ध है जो प्रयास हुए उनके कारण, और उसमें से भी कुछ जो नए बच्चे अभी जन्मते हैं तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रयास है कि सीधा उनको हम लोग वाइल्डिंग करें, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एसओपी भी बनाया गया है। उसके लिए एक ऑलरेडी एक हम लोगों ने मतलब राज्य राजस्थान में कैसा सेंटर छोटा तैयार किया है कि सीधा उसको

0: वह छोटे बच्चों को ही वाइल्डिंग कर दें, तो उस तरह के प्रयास जो मतलब प्राकृतिक के साथ साथ में, जैसे गुजरात में आयुष जी ने बात किया कि हमारे पास जो पक्षी हैं वो केवल फीमेल हैं, तो वो केवल इनफर्टाइल एग हर साल देती हैं, तो वो इनफर्टाइल एग को फर्टाइल एग से रिप्लेस करके उससे नए बच्चे पैदा हों, वो सीधे वाइल्डिंग होंगे। पर साथ साथ में जो अभी नए बच्चे जो इसके आ रहे हैं राजस्थान में, उनको भी जो वाइल्डिंग के प्रयास हैं वो भी हम लोग गुजरात में भी अब फिर से हम लोग उसका प्रयास भी करेंगे कि वाइल्ड में ये बच्चों को भी छोड़े, जिससे इसकी संख्या जल्दी से बढ़ना शुरू हो, और जो अभी 4 की संख्या हमारे पास है तो वो जल्दी से बढ़ने लगे, तो ये जो एंडेंजर्ड कैटेगरी है उससे एटलीस्ट लोकली हम लोग बाहर आ पाए।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने बहुत अच्छे तरह से बताया जंप स्टार्ट टेक्निक और साथ में जो नेचुरल टेक्निक है उसके बारे में। तो ये घुराड़ के वस्ते में संवर्धन हो तो उसमें जो चैलेंजेस है वो कौन कौन सी है?
0: जैसे कि मैंने पहले बात किया था, एक तो इसका जो हैबिटेट होता है वो घास के मैदान होते हैं, और घास के मैदान भी बड़े मैदान इसको चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटे 2-4 हेक्टेयर के मैदान होगा तो उसमें इसका प्रजनन होगा और ये बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैदान छोटा होगा तो इसके ऊपर खतरा बढ़ेगा, तो उसमें हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं कि वो 8-10 हजार हेक्टेयर तक के बड़े मैदान कंटिन्यूअस पैच जो घास के हैं वो तैयार रहें। फिर हम लोग इसमें जैसे प्रोसोपिस है, इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कांटे वाली जाते हैं, उनको भी हटाएं ताकि ये उसकी जगह पे घास अच्छा आए, तो ये है। फिर उसमें जो ग्रेजिंग के कारण थोड़ा खतरा होता है, तो उसमें कम्युनिटी के साथ मिलके हम ग्रेजिंग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। फिर अगर खुला विस्तार है तो उसमें गांव से फेरल डॉग्स का भी एक खतरा रहता है, तो वो फेरल डॉग्स को कंट्रोल करने का भी प्रयास है। फिर उसके साथ ही जैसे छोटे कार्निवोर्स इस विस्तार में हैं उनके ऊपर ध्यान रखें, और जो खास करके जो ब्रीडिंग पीरियड है उस टाइम में वो छोटे कार्निवोर्स को भी हम लोग वहां से हटा पाए, थोड़ा मजबूत उसका फेंसिंग कर पाए उस विस्तार की, ताकि वो एक सुरक्षित प्रजनन क्षेत्र के रूप में उपलब्ध हो, तब भी जो है जल्दी से इसकी बढ़ोतरी हो पाएगी।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, अभी अभी इसी साल गुजरात के 5वें एक जो वेटलैंड्स है, जल प्लावित विस्तार, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो आप श्रोता मित्रों को, ये हमने बात किया फ्लैमिंगो, सुरखाब, साथ में घोराड़, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, तो साथ ही साथ में कच्छ के एक अन्य विशिष्टता है जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, उसके बारे में भी आप बताइए।
0: जैसे गुजरात जो है एक वेटलैंड के लिए जो जल प्लावित विस्तार होते हैं उनके लिए खूब फेमस है, और कंट्री में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं गुजरात में हैं, करीब 17,000 के आसपास वेटलैंड्स हैं, वो विभिन्न जो पक्षी प्रजातियों के लिए भी बड़े अच्छे आश्रय स्थान रहते हैं। तो इसमें जो बड़े इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं तो रामसर कन्वेंशन के तहत इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। उसका एक बड़ा लंबा थोड़ा प्रोसीजर है कि उसका जो पहले एक एप्लीकेशन सबमिट होती है, उसके बाद उसका बड़ा गहन आकलन होता है, और वो आकलन के बाद ही उसको एक रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो अभी जैसे कच्छ में छारी डंड विस्तार जो और एक वेटलैंड है उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है, बड़ा सुंदर एक वेटलैंड है और बहुत अच्छे संख्या में और अच्छी प्रजातियों के पक्षी उसमें आते हैं हर साल, तो उसको एक इस रामसर साइट का दर्जा मिलना हमारे लिए एक गौरव की बात है।
1: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 अप्रैल 2026 के मन की बात कार्यक्रम में गुजरात कच्छ के फ्लैमिंगोस, फ्लैमिंगो सिटी, सुरखाब और साथ ही में घोराड़, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात की। इस बात के लिए विस्तृत मार्गदर्शन के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित रहे, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष शर्मा जी भी उपस्थित रहे। आकाशवाणी और श्रोता परिवार के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: आपका भी खूब खूब धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें आज हमारा विषय था प्रकृति का संरक्षण। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों के संरक्षण के बारे में। हमारे विशेषज्ञ थे श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग, गुजरात।

0: राज्य और श्री आयुष वर्मा जिला वन संरक्षक कच्छ ईस्ट डिवीजन वन विभाग गुजरात राज्य। आपसे बातचीत कर रहे थे श्री हितेश मावाणी वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था राजेश खराड़ी का। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, आज देश भर के लाखों स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स एक सपना लेकर एग्जाम सेंटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आज यूपीएससी प्रीलिम्स का दिन है और जो भी आज अटेम्प्ट दे रहे हैं अपना, उन सभी को, उन सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। और याद रखिए कि हार जीत तो परिणाम होता है, लेकिन कोशिश वो हमारा काम है।
1: क्या बात है मालविका, एकदम सही बात इन्होंने कही कि हार जीत तो परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। और अगर आप बार बार भी कोशिश करना पड़ जाए तो उसमें क्या हर्ज है। जो पिछली बार हमने गलतियां करी वो शायद इस बार हम नहीं करेंगे। इसी मकसद के साथ, इसी माइंडसेट के साथ अगर एग्जाम लिखते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन में हम जाते हैं, तो यकीन मानिए चाहे हार हो या जीत हो, हम खुशी खुशी वापस बाहर आएंगे, भाई हमने ट्राई तो किया। और आज जो एस्पिरेंट्स लिख रहे हैं वो तो एग्जाम लिख ही रहे हैं, बाकी उनके जो पेरेंट्स हैं जो उनसे कनेक्टेड हैं, फर्स्ट कनेक्शन उनका जो है वो भी एग्जाम, उनकी भी एग्जाम की मैंने देखा है कई बार भी एग्जाम सेंटर्स के बाहर, चाहे ये एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम क्यों ना, पेरेंट्स इंतजार करते हैं उनके बच्चे के आने का कि वो खुशी खुशी हंसते हुए चेहरे के साथ बाहर आए। और पेरेंट्स कभी कभी क्या होता है, कोई कोई स्टूडेंट अगर अच्छा नहीं भी कर पाता है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन पेरेंट्स से कि आप उसको देख कर ऐसा थोड़ा मतलब चेहरा ना बदलें, आप हंसते ही रहें ताकि उसको एक कॉन्फिडेंस आए, अगर इस बार नहीं तो अगली बार हम जरूर कर लेंगे। ये वाला एक माइंड सेट रहेगा ना अपना, तो बहुत कुछ अच्छे से अच्छा वाला हो जाएगा। चलिए मालविका, अभी हम लेके चलते हैं हमारे दोस्तों के एक और ऐसे गाने के साथ, और ये वाला गाना है लेविटेटिंग बाय दुआ लिपा। आपके अपने आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 पर मैं हूं श्रेत और मेरे साथ हैं
0: आज ये माल्यविका।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। मैं हूं श्रेत आपके साथ और मेरे साथ है इस वक्त हमारी को होस्ट जिनका नाम है
1: माल्यविका।
0: जी हाँ दोस्तों, और आज क्या है पता है माल्यविका, एक बहुत ही कमाल का दिन है, एक बहुत ही कमाल के जीव के लिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कैसे वाइल्ड एनिमल की जो माउंटेन का असली सुपरस्टार माना जाता है, जी हाँ, दी मार्खोर। इंटरनेशनल डे ऑफ दी मार्खोर हमें याद दिलाता है कि नेचर के हर क्रीचर की अपनी एक अलग स्पेशल इंपॉर्टेंस होती है। मार्खोर सिर्फ एक एनिमल नहीं है बल्कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक सक्सेस स्टोरी भी है। आपने अपने लॉन्ग स्पाइरल हॉर्न्स और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए फेमस मार्खोर डिफिकल्ट माउंटेन्स एरिया में रहता है। ये हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी देता है, नो मैटर कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना हो, स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं मालविका?
1: बिल्कुल।
0: और आप क्या कहना चाहती हैं मार्खोर के बारे में?
1: ये जो दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वाई? बिकॉज इट रिमाइंड्स अस दैट ह्यूमंस एंड नेचर वर्क टुगेदर, पॉजिटिव चेंज इज पॉसिबल टुगेदर, बिकॉज एवरी एनिमल प्लेज अ रोल इन कीपिंग द नेचर बैलेंस्ड। लाइक यू सेड, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट सेविंग एनिमल्स, इट इज ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, रिवर्स, क्लाइमेट्स एंड अल्टीमेटली आवर ओन फ्यूचर।
0: क्या बात है। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे इस एनिमल के बारे में, तो एक वक्त ऐसा आया था कि ये एकदम दिखने ही बंद हो चुके थे और लोगों को चिंता होने लगी अब इसका क्या होगा। पर बाद में जब जो एनिमल प्रेमी हैं, जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं जहाँ पर भी ये रहते हैं मार्खोर, उन कंट्रीज़ ने इसको बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए और फाइनली जाकर एक अब ऐसा वक्त आया कि इनकी जो वापस जो पॉपुलेशन है, इनकी जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। और ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जिस भी जीव को ऊपर वाले ने बनाया है उसको इस दुनिया में रहने का हक है। और हम जो इंसान है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई जानवर खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। चलिए, इन सब बातों के साथ हम चलते हैं कुछ और गानों के साथ, पर गानों से पहले एक ऐड के साथ चलते हैं, फिर ऐड के उस तरफ करेंगे आपसे बहुत सारी बात।
2: మాటైనా
3: పాటైనా
2: ఏదో ఏదో ఉంది గుండెలో తొల్లు, ఏది అర్థం కాదు పైకి చేతల్లు, ఏ చోటైనా
3: శ్రోతల ఆనందాలగని
2: మధుర గానాల మనోరంజని
3: మన జనరంజని
2: మనసునే మీటకే నేస్తమా
3: జనరంజనిలో మీకు నచ్చిన పాటను వినాలనుకుంటున్నారా? అయితే ప్రతి బుధవారం ఉదయం 9 గంటల నుండి 10 గంటల వరకు మాకు కాల్ చేయవలసిన మా నెంబర్లు 0402324 0852, మరొక నెంబర్ 2324 0856. జనరంజని, శ్రోతల మనోరంజని, ప్రతిరోజు ఉదయం 7 గంటల 30 నిమిషాలకు మీ వివిధ భారతి 102.8 మెగా

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। मैं हूं शुरत आपके साथ और शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब। और मेरे साथ हैं हमारी दोस्त
1: आज ही मालविका।
0: मालविका, आज ये जो आज का दिन नहीं बल्कि ये जो पूरा वर्ष है, हम सब जितने भी जो जिन जो आवाज़ के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुँचते हैं, श्रोताओं तक पहुँचते हैं, हम सब क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं ये बताओ सबसे पहले। तो
1: आज मतलब ये साल हम मना रहे हैं आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल।

0: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के 90 साल जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखिए, 90 इयर्स बोलने में ऐसा सिर्फ थोड़ा सा लगता है, पर 90 इयर्स जब हम पीछे जाके देखते हैं तो 90 इयर्स में कितनी सारी दुनिया जो है हुई है, कितना बदलाव हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पर हम एज अ आकाशवाणी आप तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश आज भी करते हैं और आप तक पहुंचे हुए हैं, पर ऐसा चाहते हैं कि हर दिन जो है आपका हम बेहतर से बेहतर बनाएं। यहाँ पर चल रही बातों के ज़रिए, यहाँ पर चल रहे गानों के ज़रिए आप तक वो हर इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ जो जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि हमारे ज़रिए जो हम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आप सुनकर कहें कि वाह यार, ये बात एकदम कमाल की थी आकाशवाणी पर। तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। यहाँ पे जो सेलिब्रेशंस हैं आकाशवाणी पर, वो ये यूं ही चलते रहेंगे। उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। अभी हाल ही में जगह जगह पर पूरे भारतवर्ष में कई मैराथन हो रहे हैं, हमारे पास भी मैराथन हुआ। ये सब चीज़ें जो है आकाशवाणी सेलिब्रेट कर रहा है, और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा आप भी हैं, क्योंकि आप भी जो हमसे जुड़े हैं इतने वर्षों से, आप जो इस वक्त सुन रहे हैं, आपके जो आपके पहले वाली जनरेशन जो आप ही की फैमिली से थी वो भी सुन रहे हैं, और हम उम्मीद तो यही करते हैं कि आने वाली पूरी जनरेशन, कितनी भी जनरेशन आएगी, जब तक आकाशवाणी रहेगा जब तक आप भी रहेंगे, बस आप हमें सुनते जाएंगे। तुम भी कब से सुन रही हो आकाशवाणी को? अब तो तुम वैसे बोल रही हो आकाशवाणी पर तुम कब से सुनती हो आकाशवाणी को?
1: मैं बचपन में कभी कभी सुनती थी, लेकिन आजकल बहुत रेगुलरली सुनती
0: हम बोलते ही नहीं, हम सुनते भी हैं आकाशवाणी पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा शो होने के बाद में हम जब घर चले जाते हैं या फिर कुछ भी दूसरा टास्क करते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं और हम भी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, गेन करते रहते हैं। चलिए, इन सभी के साथ अभी चलते हैं कुछ और प्यारे से गानों के साथ। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त शरत, और मेरे साथ है आरजे
1: माल्यविका।

0: दोस्तों, आज के दिन एक इंस्पायरिंग नाम की याद आती है। जी हाँ, वो है बचेंद्री पाल। आज उनका जन्मदिन है। आपको पता है कि बचेंद्री पाल जी ने हिस्ट्री में, इतिहास में अपना नाम लिखा था जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया था। वो सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, वो हर उस लड़की की जीत थी जिसे कभी लगा होगा कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। जी हाँ, बचेंद्री पाल ने हमें सिखाया कि सपने छोटे या बड़े नहीं होते, हौसला बड़ा होना चाहिए।
1: क्या बात है। जी हाँ दोस्तों, सपने कभी भी छोटे बड़े नहीं होते। आपके अगर आपका हौसला बड़ा है तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ को हासिल कर लेते हैं, और अगर आपका हौसला बहुत छोटा है तो आप छोटी सी चीज़ को भी हासिल नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही हौसले के साथ एक फ्रीडम फाइटर ने भी देश को आज़ादी दिलाने की ठानी, जिनका जन्मदिन आज के दिन हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करतार सिंह सराभा की। सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो करेज, वो पेट्रियोटिज़म और वो यूथ पावर का एक सिंबल थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट आवाज़ उठाई और इंडिया की आज़ादी के लिए खुद को डेडिकेट कर दिया। पंजाब के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ, और यंग एज में इन्होंने अपने करियर बनाने की सोची। फिर इन्होंने बाहर के देश जाके पढ़ाई करी, और वहाँ पर सोचिए, आप बताइए कि मालविका, अगर हमारे को बाहर जाके मौका मिले तो बहुत से लोग, मतलब ना हम, हमारी बात नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं या यार हमारे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, हमको क्या करना है, या फिर ऐसे दिमाग पर। उन्होंने उस उम्र में बाहर की कंट्री में जाके पढ़ाई करी, अच्छी जॉब थी, अच्छा इनका करियर था, पर उन्होंने उस सबको छोड़ा और अपने देश आए और फिर गदर मूवमेंट का ये हिस्सा बने, और वहाँ से इन्होंने देश की आज़ादी के लिए हर मुमकिन प्रयास किया। और ये 16 नवंबर वाले दिन इन्होंने अपनी जान जो है, इन्होंने ये दुनिया को इन्होंने अलविदा कहा। ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को हम हमेशा याद करते रहेंगे, क्योंकि इन्हीं की बदौलत जो है हमें आज़ादी मिली, और आज जो है हम आज़ादी की सांसें ले पा रहे हैं, ये सिर्फ इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की वजह से ले पा रहे हैं। चलिए, अभी के लिए वक्त हो गया है 12:54 और कुछ सेकेंड्स, आगे बढ़ चुकी है घड़ी। हम आपको कुछ गीत सुनाते हैं और फिर चलते हैं अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है हेलो रेनबो।
2: LIC యొక్క బీమా కవచ్ మీ జీవిత అవసరాలకు అనుగుణంగా మారుతూ ఉండే ఒక ప్యూర్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్. కీలకమైన లైఫ్ స్టేజెస్ లో మీ సమ్ అష్యూర్డ్ ని పెంపొందించుకునే అవకాశం, ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రీమియం పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ 100 సంవత్సరాల వరకు అందుబాటులో ఉండే లైఫ్ టైమ్ రిస్క్ కవర్ తో ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉండండి. LIC హర్ పల్ ఆప్కే సాథ్.

0: आकाशवाणी हैदराबाद, मैं हूं श्रेत आपके साथ और शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब का। ये जो सेगमेंट है इसका नाम है हेलो रेनबो। जी हाँ दोस्तों, यहां पर मैं आपसे, यानी कि मैं नहीं, आज तो हम दो लोग हैं, तो यहाँ पर हम आपसे पूछते हैं कोई सवाल जिसका जवाब आप हमें कॉल करके देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर बता दूं जिस पर आपको कॉल करना है। नंबर है 0402323 0030, 0402323 4821, 0402970 4715। इन तीन नंबरों पर आप ट्रिंग ट्रिंग कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर आप ढेर सारे मैसेजेस भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर है 0402323 4822। इस पर जितने चाहें उतने मैसेजेस आप भेजें। और अब बात करते हैं हम आज के सवाल की। लाइफ में भाई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मालविका, बहुत यूनिक होता है। कभी वो हमारा बॉडीगार्ड होता है, कभी वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, कभी वो हमारा पार्टनर इन क्राइम होता है, कभी कभी वो फ्री का एडवाइज़र भी बन जाता है। और कभी कभी हम, अगर हमसे बहुत बड़ा है थोड़ा सा उम्र में, तो हम उसे पिता फिगर यानी फादर फिगर मानते हैं। और कभी छोटा है तो हमारे बच्चे जैसा उसे ट्रीट करते हैं, या फिर हम अगर किसी के छोटे भाई हैं तो हमें वो बच्चे जैसे ट्रीट करता है। बचपन की वो मस्ती याद है जहाँ पे रिमोट के लिए बहुत देर तक फाइटिंग होती थी, फिर चॉकलेट्स के लिए आर्गुमेंट हो जाते थे, कोई गिफ्ट आ जाता था तो लड़ लेते थे कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और फिर मम्मी के पास जाके एक दूसरे की शिकायत करना। मतलब दोनों ही क्राइम करते थे पर दोनों ही जाके शिकायत करते कि इसकी गलती है, और फिर फाइनली रिजल्ट के तौर पे पिताजी दोनों को ही गिफ्ट के तौर पे दे देते थे। और ये सब जो है बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये जो भाई वर्ड है ये पूरी दुनिया है। जिस तरह आपके माता पिता आपकी लाइफ में ज़रूरी है, ठीक उसी तरह आपके भाई भी आपकी लाइफ में उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके लिए हर एक मोड़ के, लाइफ के हर एक मोड़ पे रेडी रहते हैं आपकी मदद करने के लिए। तो बस आज का हमारा सवाल भी कुछ इसी पॉइंट पर है कि आपकी लाइफ में आपके जो भाई हैं, चाहे वो आपके छोटे भाई हैं या फिर बड़े भाई हैं या फिर आपके सेम, अगर आप ट्विंस हैं तो सेम एज वाले भाई हैं, तो वो आपकी लाइफ में क्या रोल अदा करते हैं, वो आपकी लाइफ में क्या ऐसा करते हैं, क्या यूनिकनेस उनकी लाइफ आपके प्रति क्या है कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको वो जो कह दे आपके लिए पत्थर की लकीर है, आप उनकी बात को क्रॉस नहीं करते। बस ऐसी क्या चीज़ है आपके भाई में जो उनको बहुत स्पेशल बनाती है, आपकी लाइफ का स्पेशल पर्सन बनाती है। तो कॉल करें दिए गए नंबरों पर, एक बार फिर से मैं नंबर दोहरा दूँ, 0402323 4821, 0402323 4822 पे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, 0402323 0030, और फिर 0402970 4715। इन तीन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आपके कॉल्स का इंतजार है। और मालविका भी अपने भाई के बारे में कुछ बोलना चाहती है।
1: मेरे भाई के बारे में मैं क्या ही बताऊं। यूजुअली जब भाई बहन रहते हैं तो लगता है कि ये तो हमेशा झगड़ते हैं, लेकिन हमारा सिलसिला कुछ ऐसा नहीं है। मेरा भाई और मैं, हम दोनों के बीच बहुत ही प्यार भरा रिश्ता है हमारा। हम दोनों साथ में मूवीज देखते हैं, कार्स के बारे में खेलते हैं या कार्स रेसिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं। तो
0: अच्छा, मालविका भी साइकिल चलाते हैं। हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और आप भी बताएं, जिस तरह से इनके भाई के साथ तो एज अ फ्रेंड ये रहती हैं, आपके भाई के साथ आपका कैसा रिलेशन है और आपकी लाइफ में वो क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये मेरे को बताइए। कॉल करें दिए गए नंबरों पर और रबी के चलते हैं एक बेहतरीन से गाने के साथ, और गाने के उस तरफ आपसे होगी बहुत सारी बात।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो ऐड कलर्स टू योर लाइफ। और मैं हूं शरत आपके साथ, और मेरे साथ है आरजे। और हम दोनों के लिए किसी दोस्त ने बहुत ही

0: सुंदर सा मैसेज भेजा है मेहंदीपट्टनम से, और वो कहते हैं कि छोटा सा थॉट है, और वो लिखते हैं कि ज़िंदगी में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ चीज़ें वक्त के साथ समझ आती है। चांद रोज़ पूरा नहीं होता, समंदर रोज़ शांत नहीं होता, और इंसान रोज़ मजबूत नहीं होता, फिर भी सब फिर भी सब चलता रहता है। शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। और जाते जाते, अच्छा वो कहीं जा रहे हैं शायद, जाते जाते धूप और गर्मी बहुत है, तो प्लीज़ आप अपना और अपना सभी का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नाम आपने नहीं लिखा, नेक्स्ट टाइम आप मैसेज करें तो ज़रूर अपना नाम लिखें। इनको एक गाना सुनना है माइकल जैक्सन की आवाज़ में, ज़रूर हम ट्राई करते हैं, हमारी लिस्ट में वो होता है। तो और भी एक मैसेज है यहाँ पर, उन्होंने भेजा है नमस्कार, तो हम भी इनको नमस्कार भेजते हैं, और दिल भी भेजा नमस्कार के साथ इन्होंने, थैंक यू सो मच। और एक साहब है जिन्होंने एक बहुत ही पुराना, जो मतलब रेडियो आता था ना, एक दौर चलता था रेडियो और कैसेट वाला, दोनों एक साथ होता था, बटन दबाने से रेडियो चलता था और इधर बटन दबाने से कैसेट चलती थी, उसका वीडियो भेजा है। ये जब भी मैं आता हूँ या फिर जब भी कोई दूसरे होस्ट भी आते हैं, तो ये हमेशा इस रेडियो की ओर की फ़ोटो भेजते हैं, और हमारे को उस पुराने दौर में लेके जाते हैं जहाँ पर रेडियो एकदम दिल के करीब हुआ करता था, ठीक आज के जैसा। हाँ अभी ऑप्शन बहुत सारे हैं, पर रेडियो आज भी उतना ही दिल के करीब है हम सभी के। चलिए मालविका, अभी हम हमारे श्रोताओं को लेके चलते हैं एक और प्यारे से गाने के साथ। गाना है नकाश अजीज और चिन्मया श्रीपदा की आवाज़ में, और गाना कहता है ख्वाबों में, फिल्म का नाम कांतारा, और ये गाना भी बहुत ही ब्यूटिफुली जो है फिल्माया गया, गाया गया और हम तक पहुँचाया गया।
1: பத்தா தொழுகைகே மணி முழே தீத மதி கோதண்ணா பக்தில்ல மதி

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो एट कलर्स टू योर लाइफ। और आज हम भाई की बात करें क्योंकि आज ब्रदर्स डे है और हमारे साथ हमारे एक दोस्त जुड़े हैं, हमारे श्रोता जुड़े हैं। जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं अपने भाई के बारे में। हेलो,
1: हरी ओम।
0: हरी ओम सर, कैसे हैं सर?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ।
0: विलास जी बात कर रहे हैं, राइट?
1: हाँ जी, मेरा नाम विलास पेनुरकर है, नल्लाकुंटा भाग्यनगर से बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है सर। सर बताइए कि आपकी लाइफ में आपके जो भाई हैं उनका किस तरह से मतलब मुख्य मुख्य रोल है या फिर योगदान है, और जो उनको सबसे अलग बनाता है और आपकी लाइफ में उनको बहुत इम्पोर्टेंट बनाता है।
1: हाँ जी,
0: जी
1: मैं मेरे भाइयों में और बहनों में सबसे बड़ा हूँ।
0: ओह ग्रेट सर।
1: तो जिसके कारण मुझे पिताजी क्या करते थे कि बीच बीच में बाहर ले जा करके मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए इसके बारे में मुझे जानकारी देते थे। जिसके कारण हुआ ये कि मेरे जो छह भाई और बहने हैं, मुझे दो भाई है,
0: जी
1: तो
0: हाँ सर,
1: विशेष रूप से मैं इनकी ओर कैसे ध्यान देता था उसका उदाहरण मैं आपको दूंगा।
0: जी
1: ये
0: हाँ,
1: जब पाठशाला में पढ़ते थे तो मैं उनकी पाठशाला में जाता था, ये जब महाविद्यालय में पढ़ते थे तो मैं उनके महाविद्यालय में जाता था, उनके शिक्षकों से, उनके प्राध्यापकों से बात करता था, इनकी पढ़ाई कैसे चल रही है पूछताछ करता था,
0: ओके,
1: साथ साथ उन्हें घुमाने के लिए भी ले जाता था।
0: हाँ समझ
1: हाँ,
0: गया।
1: और परिवार के एक सदस्य के नाते उन दो भाइयों का, मुझसे जो छोटे दो भाई हैं उनका क्या कर्तव्य है इसकी मैं उनको जानकारी देता था।
0: क्या मतलब जो चीज आपको आपके पिताजी ने समझाई आप फिर आपके छोटे भाइयों को समझाते थे?
1: बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये मैं उनके पाठशाला में या महाविद्यालय में जब जाता था तो इनको जरा बुरा लगता था,
0: हाँ, अरे भैया कैसे आगे बोल के
1: लेकिन मैंने सोचा कि भाई आज तो इनको बुरा लगेगा लेकिन क्या होगा कि मैं अगर से इनकी जानकारी लेने जाऊंगा तो इनको भी लगेगा कि भाई हमको पढ़ना है और हमारी पढ़ाई की ओर हमको ज्यादा ध्यान देना है, अन्यथा हमारे भाई आएंगे हमारे प्राध्यापकों से शिक्षकों से पूछताछ करेंगे। तो जिसके कारण उनको बुरा भी लगता था तब भी मैं उनके पाठशाला और महाविद्यालय में जाता था।
0: मगर मुझे उम्मीद है विलास जी के जो आप तब भले ही उन्हें बुरा लगा हो पर आज उनके जीवन में जो भी वो हैं तो आपको जरूर याद करते होंगे।
1: निश्चित रूप से, क्योंकि हुआ ये कि आगे चल के वो जीवन अपने जीवन में कुछ अच्छा बन सके।
0: जी हाँ,
1: और आज वो अपने पत्नियों को भी बताते हैं कि हमारे बड़े भाई किस प्रकार हमारे पीछे हमारे महाविद्यालय में और पाठशाला में आते थे, हमको कैसे घुमाने के लिए ले जाते थे। इतना ही नहीं, उनको मैं पढ़ाता भी था।
0: क्या
1: जैसे
0: बात है।
1: गणित विषय है, गणित विषय पर मेरा ज्यादा ध्यान रहता था, साथ साथ अंग्रेजी और बाकी विषयों को भी मैं उनको पढ़ाता था लेकिन मेरा ध्यान अधिकतर गणित विषय पर रहता था। और हमारे समय पद्धति ये थी कि केवल एक पुस्तक से हम गणित नहीं करते थे बल्कि तीन तीन पुस्तकों में से गणित करवाते थे।
0: हाँ मतलब वो दौर अलग था। और जो आपने किया ना सर, वो हर एक बड़े भाई का फर्ज होता है अपने छोटे भाइयों के लिए, और जिस तरह से आपके छोटे भाई भी आज भी उन चीज़ों को याद करते हैं ना, वो उन्होंने भी अपना फर्ज बखूबी निभाया है सर। बहुत
1: हाँ
0: बहुत
1: जी,
0: धन्यवाद सर कॉल करने के लिए।
1: आपका आभारी हूँ, आपने मुझे समय दिया।
0: थैंक यू सर। दोस्तों ये थे विलास पेनुर।

मुखर्जी, जिन्होंने मतलब अपने जो इनके पेरेंट्स थे, इनके जो फादर थे, उन्होंने सिखाया था कि बींग अ बड़े भाई आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने छोटे भाई छोटे बहन का जो है ख्याल रखें, उनके एजुकेशन का ध्यान रखें। और इन्होंने वो चीज़ भी बखूबी निभाई। वो अपने भाइयों के कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर टीचर्स को बोलते हैं ये पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, जो हर एक बड़े भाई का फ़र्ज़ होता है और उधर निभाना भी चाहिए। और आज जो इनके भाई हैं, वो जो उनका ये उस वक्त का जो सेक्रीफाइस बोल दो, डेडिकेशन बोल दो, उसको याद करके आज छोटे भाई भी खुश होते हैं और विलास जी खुद भी खुश होते हैं, क्योंकि छोटे भाई वो चीज़ का डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, बस मेरा आज का सवाल यही है, आज है ब्रदर्स डे और मैंने और मालविका ने सोचा कि ना भाइयों के प्रति आज कुछ बात कर ली जाए। तो आप लोग भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपके जो भाई हैं, छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, वो आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंस उनका है, जो उनकी प्राथमिकता है या फिर जो उनकी वैल्यू है, वो किस लिए है? क्योंकि उनके अंदर कुछ तो ऐसी खास चीज़ होगी ना जो उनको सबसे अलग बनाती है। या फिर आप खुद अगर किसी के बड़े भाई या छोटे भाई हो तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो कि आपके भाई आपको किस तरह से प्रेम करते हैं। तो कॉल करने के लिए नंबर है 0402323003004023234821, 0402323

0: నేను ఎం శ్రీనివాస్, డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్, హైదరాబాద్. పిల్లల పరంగా మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్స్ కానీ 0 to 18 ఇయర్స్ ఎటువంటి పిల్లలు మీకు కనపడినట్లయితే మీరు 1098కు కాల్ చేయండి. 24/7 అవైలబుల్ ఉంటుంది పిల్లల పరిరక్షణకై హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन. मैं हूं श्रत आपके साथ और हमारे साथ इस वक्त एक और होस्ट है जिनका नाम है
2: मालविका.
1: आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं ज़रा आप भी अपने दर्शकों को बताएं, श्रोताओं को बताएं.
2: जी ज़रूर. आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं भाइयों के बारे में, वो भाई जो हर वक्त हमारा साथ देते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन उस लड़ाई झगड़े के पीछे भी एक प्यार भरा
1: एक प्यार भरा एक सपोर्ट छुपा होता है. और हम आज यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो आपके भाई हैं, चाहे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, या फिर बड़े से बड़े वाले भाई क्यों ना, उनका क्या रोल है और वो इतने इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में है क्यों. तो एक और हमारे साथ हमारे दोस्त जुड़े, जानते हैं कि वो क्या कहते हैं. हेलो हेलो. हाँ जी
3: हाँ जी, मैं अप्रैल से कीर्ति लक्ष्मी बोल रही हूँ.
1: हाँ मैडम, नमस्कार मैडम. ओके बोलिए मैडम.
3: बहुत ही सुंदर टॉपिक लिया है. सबसे पहले तो आपको बधाई.
1: बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैडम.
3: आपने टॉपिक लिया है भाइयों के बारे में. भाई का तो जिंदगी में बहुत ही एहसान है.
1: जी हाँ मैडम.
3: जी हाँ. और
1: आपके जो आपके भाई आपसे बड़े हैं या छोटे हैं.
3: मेरे जीवन में तो भाइयों का और भी महत्व है क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तभी मेरी माँ गुजर गई.
1: ओहो.
3: तो मेरे भाइयों ने ही मुझे पाला पोसा, ये कहिए कि बड़ा किया. और हम चार भाई हैं. चार भाइयों में से सबसे छोटे भैया ने ही मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया.
1: क्या बात.
3: बाकी तीन काफी बड़े थे, मैं अपने घर में सबसे छोटी संतान हूँ, इसलिए चौथे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया. जैसे पापा पढ़ाना नहीं चाहते थे तो भैया ने कहा कि नहीं, हमारी बहन कॉलेज जाएगी, पढ़ेगी. फिर हाँ. जब मेरी शादी हुई, रिश्ते के लिए भी भैया ने ही साथ रहकर सब कुछ कराया. यहाँ तक कि मेरे बच्चे हुए तो बच्चों के समय भी भैया, भाभी, ये कहूँ कि भाभी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भाभी ने भी निभाया.
1: जी हाँ.
3: तो जहाँ भाई का महत्व है वहाँ भाभी का भी महत्व है.
1: जी हाँ जरूर. जो भाई से जुड़ा है वो भाई हो, मतलब भाई के थ्रू जो है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है मैडम.
3: इम्पोर्टेंट होता है. भैया ने भी जब मैं तो यहाँ केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत थी तो जब भी दो, दो, दो बच्चे हुए, भैया भाभी हमेशा मेरे साथ रहे.
1: क्या बात.
3: और मेरे वर्किंग प्लेस पे भी आके मुझे मेरी भाभी छोड़ कर गई, तो भैया के कहने पर ही भाभी छोड़ी थी, भाभी ने भी मदद की.
1: सही
3: तो
1: है.
3: भाइयों के बगैर तो बहनें हमेशा अधूरी हैं.
1: क्या बात है. धन्य है आपके भाई को भी जिन्होंने आपका हर हर समय में साथ दिया. और
3: उनके एहसानमंद रहूंगी.
1: क्या बात है मैडम.
3: जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे भाइयों के तो एहसानमंद हूँ. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू सो मच.
3: सब लिया कीजिए, बहुत सुंदर है.
1: थैंक यू सो मच.
3: सोसाइटी के लिए अच्छे अच्छे मैसेज भी जाते हैं इससे.
1: जी जी मैम, श्योर. हम FM रेनबो पे यही करते हैं कि हम सुंदर टॉपिक ही लाने की कोशिश करते हैं जो आपके दिल तक पहुंचे, फिर आपके दिल से जो आवाज निकले वो सब तक पहुंचे. वैसे आज मैंने टॉपिक लिया, हमने टॉपिक लिया है, मालविका ने ये टॉपिक सजेस्ट किया था मेरे को कि आज ब्रदर्स डे है तो आप इस पर कोई टॉपिक पर बात कीजिए. तो हमने आज पूछने की कोशिश की है कि आपकी लाइफ में जो आपके भाई हैं उनका क्या रोल है, वो कितने इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, वो आप मुझे बताएं. और उसके पीछे का एक वजह होती है, एक इंसान आपकी लाइफ में जब इंपॉर्टेंट बनता है ना मालविका, तो उसके पीछे एक रीजन होता है, एक वजह होती है कि भाई वो उसका वो खासियत है. अब मेरे एक दोस्त हैं, उनका एक छोटा भाई है और उनका छोटा भाई जो है ना, ये बोलते हैं कि इनको कोई जॉब की टेंशन नहीं है. जॉब करते हैं पर जॉब की टेंशन नहीं है कि मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा. उनकी खुद की भी

0: फैमिली बोलते हैं, मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं, क्योंकि अगर मैं जॉब छोड़ भी दूंगा तो मेरा जो भाई है वो थोड़े दिन तक तो संभाल लेगा जब तक मैं दूसरी नौकरी पकड़ लूंगा। तो इस तरह का जो ट्रस्ट होता है आपको आपके भाई पे, तब आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत से चल रही है और चलती रहेगी जब तक आपका भाई आपके साथ रहेगा। तो आप अपने भाई के बारे में मुझे बताएं, 0402323482104023230030, 0402297047715 ये तीसरा नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर है 0402323482। इस पर आप ढेर सारे मैसेजेस भेज सकते हैं। और भाइयों का जब नाम लिया तो अश्विन भाई भी हमारे एक श्रोता हैं जो हमें बहुत सुनते हैं, बहुत प्यार देते हैं, और उन्होंने लिखा है कि जब मन स्थिर होता है तब हर समस्या का समाधान स्पष्ट दिखने लगता है, क्योंकि शांति में ही शक्ति है और स्थिरता में ही समाधान है। सुप्रभात इन्होंने कहा है आफ्टरनून के टाइम पे, पर कोई बात नहीं, जब उठो तभी सगेरा सवेरा। मैं हूँ श्वेता आपके साथ, और मेरे साथ है इस वक्त आरजे
1: मालविका।
0: मालविका सिर्फ ये बस इतना सा बोल रही है, विश्व कुछ नहीं बोल रही है, अब हंस रही है। कोई बात नहीं मालविका, अभी हम चलते हैं एक और गाने के साथ, और जब वापस आएंगे तो आप करना सबसे बात।
1: जरूर।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Yeah.
2: You're right.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मधुर गीत का स्वागत है। अगर हम बात करें 9 अंक की तो बहुत खास होता है ये। पूर्णता, परोपकार, आध्यात्म और ज्ञान का प्रतीक होता है और ये बताता है कि ये जीवन का ना कई चक्र पूरे हो चुके हैं। तो हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि आज हमारे इस एपिसोड का ना 9 अंक से बहुत खास लेना देना है, क्योंकि जो प्रसार भारती है उसका जो रेडियो डिवीजन है वो अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और इस खास मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना आपको हमें एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जिसने 90 सालों के सफर को या उसके बहुत अहम पहलुओं को करीब से जाना है, समझा है। आज हमारे साथ हैं फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी मिताली चटर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: अपनी स्वागतो क्या बोलते हैं आप बताएं?
1: सुस्वागतम, अदरवाइज आप हिंदी में बोल सकते हैं क्योंकि बेसिकली आई एम अ यूपीआइट।
0: ओह, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: आपके करियर से शुरुआत करते हैं।
1: जी,
0: रेडियो हम सब सुनते हैं, बहुत बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। तो जब आप रेडियो सुनती थी, क्या कभी आपने सोचा था कि आप रेडियो में जाकर काम कर रही होंगी?
1: हाँ, ये बात आपने बहुत पूछी है जो मेरे दिल के काफी करीब है। इनफैक्ट वो दौर ही कुछ और था, 80s का दौर था, और उस समय रेडियो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था हर एक के जीवन में, क्योंकि उस समय ये प्राइवेट कुछ भी नहीं था और टीवी भी नहीं था। तो रेडियो मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए इट वाज अ वेरी बिग एंटरटेनमेंट, और एक फैसिनेशन भी होता था क्योंकि वहाँ पे द पीपल हु वेयर प्रेजेंटिंग द प्रोग्राम्स वो लार्जर देन लाइफ होते थे हम लोग के लिए, कि हम लोग एक इमेजिन करते थे। रेडियो में वही पक्ष सबसे मजेदार है, आप कुछ भी सोच सकते हैं जी, कैसे हो रहा होगा पीछे।
0: तो वो इमेजिनरी वर्ल्ड यहाँ पर आकर क्या बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने सोचा था?
1: देखिए, एक शुरुआती में जर्नी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरी जर्नी शुरू हुई थी व्हेन आई वाज इन माय टीन्स।
0: ओके।
1: और मैंने बतौर एक क्लासिकल सिंगर युवावाणी में एग्जाम दिया था एंड आई गॉट थ्रू इट, तो वो मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया। और मुझे पता नहीं था कि एक दिन मुझे यहीं पे काम करने को मिलेगा एज एन इंजीनियर।
0: उतने लंबे समय में आपने बहुत लंबे समय तक काम किया। आपने शायद बताया कि 33 सालों तक आपने काम किया, 3 दशक से भी ज्यादा। क्या उस समय से लेकर अब तक एक ट्रेडिशनल वे में जब हम काम करते थे और आज इंटरनेट के दौर में और डिजिटल एरा में क्या फर्क आया है, क्या एवोल्यूशन आपने देखा है?
1: एक तरह से मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मैंने वो पुराने दौर से लेके डिजिटल एरा तक का सफ़र पूरा अपनी आंखों से देखा है।
0: बिल्कुल।
1: अपनी सर्विस के दौरान, और मैंने हर एक पल को जिया भी है बहुत नज़दीकी से। एंड सबसे बड़ी बात है, आज के समय में कई बार हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं ना AIR, ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन कहाँ चला गया, क्या है, लेकिन उस समय इसका एक ओहदा ही कुछ और हुआ करता था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि फर्स्ट जब इंटरनेट आया था 1997 के आसपास, AIR वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रेडियो ऑन इंटरनेट की शुरुआत की थी। और वहाँ पे हम लोग के पास इतने प्रोग्राम मतलब इतने ईमेल्स आया करते थे, और हम लोगों ने R&D रिसर्च डिपार्टमेंट से इसकी शुरुआत हुई थी, तो हम लोग के पास सैकड़ों की तादाद में आया करते थे, क्योंकि फॉरेन में उस समय इस तरह के भारतीय प्रोग्राम्स का कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि उस समय DTH शुरू नहीं हुआ था।
0: बिल्कुल।
1: तो वो एक दौर था कि उस समय डिजिटल 1998 में रेडियो ऑन इंटरनेट शुरू हुआ
0: जी।
1: तो वो एक बहुत ही यादगार समय है। और जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय तो FM इट स्टार्टेड
0: जी,
1: तो वो भी एक हमने देखा था कि लोगों के बीच में कितना उत्साह है, और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था काम करके।
0: बिल्कुल। डिजिटल एरा में आने के बाद आपको क्या लगता है कि जो बदलाव हुए हैं बहुत अच्छे हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके, किस तरफ जा रहे हैं हम?
1: देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो आदमी की ह्यूमन एफिशिएंसी को एनहेंस करने के लिए होता है
0: जी,
1: और उसको उस तरह से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी

0: जुड़ी भी है एक प्रोग्रेस के लिए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे डिजिटल एरा में हम लोग जी रहे हैं. लेकिन इसका एक डाउनसाइड ये है कि जब टेक्नोलॉजी ही हमारे अगेंस्ट काम करने लगती है. मैं इसका एक जस्ट एग्जाम्पल दूंगी, इससे रिलेवेंट है या नहीं, क्योंकि पहले ड्राइवर्स जो थे उनको पूरे रोड्स दिल्ली में मालूम होते थे. आज के डेट में कोई भी ड्राइवर लेके गूगल मैप पहले ऑन करता है, उसके बाद गाड़ी चलाता है. तो हम लोग शायद अपनी जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है उसको शायद लूज करते जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि शायद जो हमको और प्रोग्रेस करना चाहिए था वो कहीं हम लोग इतनी
1: हमें एक बैलेंस
0: डिपेंडेंसी नहीं
1: बनाना
0: हो.
1: आना
0: हाँ
1: चाहिए
0: जी,
1: दोनों
0: हाँ
1: के
0: जी
1: बीच में. बिल्कुल.
0: जी
1: अब मैं बात करूंगी यहाँ पर, क्योंकि अब डिजिटल एरा में रेडियो और टेलीविजन लगभग मिक्स हो गया एक तरीके से देखा जाए तो. अब रेडियो सिर्फ सुनने का माध्यम नहीं रहा, अब हम कहीं कहीं उसे देख भी सकते हैं. रेडियो और टेलीविजन दोनों का डिफरेंस आपको क्या समझ में आता है, क्या खास डिफरेंस है और किस तरह से रेडियो यूनिक है?
0: देखिए, अगर बीइंग एन इंजीनियर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें
1: जी, उस
0: तो
1: पर भी आएंगे हम आगे.
0: हाँ, वो तो
1: बिल्कुल.
0: फ़र्क, बहुत फ़र्क है. लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यू है कि जब आप टीवी में देखते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि ऑडियो विजुअल माध्यम ज़्यादा सशक्त है, लेकिन जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको सामने ही सब कुछ दिखता है कि जो आदमी एक्ट कर रहा है या जो भी कर रहा है. लेकिन रेडियो में एक वो तिलिस्म, या आप कह सकते हैं कि
1: जादुई
0: एक
1: दुनिया.
0: जादुई दुनिया, और आप जिनकी आवाज़ सुन रहे हैं, यू यू आर फ्री टू इमेजिन द पर्सन
1: बिल्कुल
0: बिहाइंड दैट.
1: बिल्कुल.
0: आई फील दैट वे AIR हैज़ द एडवांटेज, क्योंकि जब हम लोग हवा महल सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं, शायद वही जो आर्टिस्ट है पीछे वही कर रहे होते हैं. लेकिन हम जब भी उनकी बातों को सुनते हैं या उसके हिसाब से हम उसको इमेजिन करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है.
1: राइट राइट.
0: जी
1: अगले 10-20 सालों में आपको क्या लगता है रेडियो कहाँ पहुंचेगा, या क्या AI का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा जैसा कि डर बना हुआ है, जिस तरह से टेलीविजन के एक क्षेत्र में भी जो है AI आ चुका है, और रेडियो में क्या किस तरह की चीजें हो रही हैं?
0: देखिए, AI जो है आज के दिन में सब जगह पेनिट्रेट कर चुका है, और मुझे लगता है कि जब तकनीक अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करना भी वाजिब है. लेकिन वही है कि AI को इस्तेमाल करते करते हम अपनी RI को ना भूल जाएं, रियल
1: जी
0: इंटेलिजेंस, विच इज़ अ ह्यूमन एसेट. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि AIR के पास आज के समय में जो सबसे बड़ी इसकी ताकत है, आप लोग के प्रोग्रामिंग स्टाफ का, क्योंकि इनको इतने अच्छे से सेलेक्ट किया जाता है, दे आर कमिंग फ्रॉम UPSC. तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए कि कम से कम हम लोग ग्रास रूट लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, क्योंकि आज का ज़माना देखिए, इट इज़ नॉट वॉर्स आर द रियलिटी टुडे. वी नेवर थॉट कि 21st सेंचुरी में वॉर्स होंगे.
1: जी.
0: लेकिन और एक चीज़ और है कि इसमें संचार माध्यम या जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको लास्ट पॉइंट तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है. जैसा आप कह रही हैं कि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है,
1: जी, मैं वही बात कर रही हूँ
0: वो
1: कि
0: बहुत ज़रूरी
1: ग्रामीण
0: है.
1: इलाकों में, रूरल एरियाज में बहुत लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी को जानते भी नहीं
0: जी
1: हैं, और उनको अक्सर ठगा जाता है,
0: बिल्कुल
1: ये होता है,
0: बिल्कुल
1: तो ये नहीं होना चाहिए.
0: बिल्कुल, ये बहुत
1: चलिए,
0: डेंजरस है.
1: अभी तो हमने बात करी कैसे एवोल्यूशन हुआ, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की. क्योंकि जब रेडियो की बात होती है तो अक्सर लोग सिर्फ RJ को जानते हैं या अनाउंसर को जानते हैं, पर उसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है. जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी पूरी एक टीम है यहाँ पर काम कर रही
0: जी
1: है, उसके बिना ये पॉडकास्ट लाइव नहीं हो सकता है.
0: बिल्कुल.
1: तो उसी तरह से रेडियो में भी है. किस तरह से पूरी जर्नी होती है, क्या प्रोसेस होता है, वो जो पकी पकाई खीर है लोगों तक पहुंचती है, उसको टेबल तक पहुंचाने का काम करने वाले लोगों का नाम भी आना चाहिए सामने, क्या रहता है वो पूरा प्रोसीजर?
0: देखिए, वाकई में तो ये सारा का सारा फिजिक्स एंड साइंस की करामात है,
1: जी.
0: जो हम लोग इतने दूर बैठे भी सबकी बातें हैं या देख सकते हैं. तो उसपे पीछे बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती है तकनीकी. पहली बात तो हम आप जहाँ पे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, शायद इस कमरे से दूसरे कमरे में जाके ही आपको सुनाई नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है. तो ये एक यहाँ पे डिजिटल में तो इनकोडिंग की प्रोसेस भी होती है उसके बैंडविड्थ को कम करने के लिए. एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसड्यूसर से हमारी वॉइस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं,
1: तो
0: जो
1: क्या
0: आप
1: क्वालिटी
0: माइक्रोफोन से.
1: में चेंजेस आते हैं या वैसे ही रहती है?
0: नहीं, इट डिपेंड्स. से डिजिटल में तो आज के डेट में क्वालिटी, इनफैक्ट आप जो सुनते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, यू कैन इम्प्रूव इट रादर,
1: राइट
0: कि
1: राइट,
0: आपने कहीं पे गलत बोल दिया या
1: वेरी
0: आपकी
1: ट्रू.
0: आवाज़ में खराश है तो वो भी ठीक हो जाएगी. लेकिन इम्प्रूवमेंट का जहाँ तक है, आज के डेट में AIR प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है सारे, तो उसमें उस तरह की डिग्रेडेशन का कोई चांस नहीं है. और बाकी जो है हमारे तकनीकी जो सहायक हैं, वो लोग भी काफ़ी अच्छे से अपना काम करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई डिटरेशन है.
1: राइट।

0: के लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: अब बात करते हैं कि हम देखते हैं और सुनते हैं कि बहुत सारे रेडियो चैनल्स काम करते हैं अपने अपने अलग अलग तरीके से, लेकिन आकाशवाणी का जो है वो एक अलग अंदाज रहा है जिसे लोग याद करते हैं, और बहुत ही सभ्य भाषा के लिए जाना जाता है आकाशवाणी, जो मुझे लगता है कि अभी भी कायम है। ऐसा नहीं है कि हम भाषा अच्छे इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सो अब इस फास्ट पेस्ड एनवायरमेंट में किस तरह से बाकी रेडियो चैनल्स जब बहुत फास्ट पेस्ड हो गए हैं तो कैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हमारी जो है वो अपने आप को सहज बना पाती है या उस तरह से प्रस्तुत कर पाती है लोगों के सामने?
3: देखिए, बहुत ही एक कठिन सवाल आपने पूछा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसमें हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और ठीक है, एक समाज के हिसाब से जो बने थे उस समय जैसे भी बने हैं, तो उसके दायरे में रखकर सारी चीज़ों को करना मुश्किल होता है प्रोग्राम, क्योंकि आज के दुनिया में जो चीज़ें पहले शायद वो कहते हैं ना नियो नॉर्मल, तो पहले जो चीज़ें शायद स्वाभाविक नहीं थी, आज के डेट में वही चीज़ें आज के डेट में स्वाभाविक हैं। तो आप अगर उसको कुछ चीज़ें कर्टेल करते हो तो स्वाभाविक है आप यंगर जनरेशन के बीच में आप थोड़े से ऑकवर्ड लगोगे। तो वो तो एक कहीं पर है, और इसमें इस तरह का भी आप कह सकते हैं कि जैसे किसी को आपने सैक रेस वाला ड्रेस पहना दिया और उसको बोला गया जाए कि मैराथन दौड़ो।
2: जी जी बिल्कुल।
3: तो कठिन है, यस, लेकिन साथ में आकाशवाणी का ये एक बहुत अच्छी भी बात है कि इसकी एक अलग पहचान है। इसको आप सारे परिवार के साथ आप सुन के बैठ के देख सकते हो, प्लस उसके अलावा जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और बहुत सारी प्रोग्राम मुझे लगता है जेनजी भी सुनती। मैं अभी देख रही थी, इंटरनेट पे मैं चेक कर रही थी, करीब 50% लोग जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, दिल्ली में तो आप जानती हैं गाड़ी में ट्रैवल करना कितना लंबा और डिफिकल्ट होता है, तो लोग रेडियो सुनते हैं कि दैट्स द ओनली वे दैट दे गेट एंटरटेनमेंट। तो मुझे लगता है वहाँ पे एआईआर का ऐसा भी नहीं, लोग सुनते हैं, मैं तो सुनती हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग सुनते हैं स्पेशली अच्छे वाले प्रोग्राम,
2: और नए नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं।
3: बिल्कुल।
2: इतना लंबा समय जो आपने बताया यहाँ पर आकाशवाणी में, आपके खुद के एक्सपीरियंस क्या रहे वर्क कल्चर में या पर्सनल, या फिर क्या आपके टेक अवेज यहाँ से रहे?
3: देखिए, उस हिसाब से मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि वर्क कल्चर के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है, और इसमें चाहे आपके सीनियर्स हो चाहे आपके कलीग्स हो, दे आर गुड, दे आर वेरी गुड पीपल एंड दे गिव यू द स्पेस। और शुरू शुरू में मुझे याद है जब ने ज्वाइन किया था उस समय मेरे हम लोग थ्रू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आए थे डायरेक्टली क्लास्टन सर्विस में, तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो नेचुरली एक फ्रेश रिक्रूट को कुछ भी पता नहीं होता है कैसे, व्हाट आर द नॉर्म्स एंड कैसे उसको बिहेव करना है। तो माय बॉस कॉल्ड मी वन डे, वी वर गिवन अ रूम, सेपरेट रूम्स एंड ऑल दिस, और उस समय काफ़ी लोग रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज़्यादा। तो सर आए मेरे कमरे में, ही सेड कि लिसन यू आर जस्ट गॉट एंट्री टू द सर्विस, आपको कमरे में बैठने के लिए नहीं बोला है, गो टू द फील्ड्स।
2: ओह माय गॉड।
3: सो हम लोग जाते थे, और फील्ड्स में उस समय जैसे एंटीना ट्यूनिंग यूनिट वगैरह ये सारे बहुत खेत टाइप की जगह में हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े घास हुआ करते थे, कई बार सांप वगैरह भी निकलते थे, तो यू वर सपोज टू गो देयर एंड लेकिन अच्छा लगता था, मैंने हमने एंजॉय किया है धूप में, कड़ी धूप में, और वो एक सेटिस्फेक्शन होता था कि आप कुछ कर रहे हैं वर्थ वाइल। तो आई एम इंडेटेड टू दोज पीपल हु हैव टॉट मी, मे बी इट वॉज अ डिफिकल्ट वे इनिशियली, लेकिन उन्हीं की वजह से शायद।
2: जी, आपने भी बीच में बात करी थी रिस्पेक्ट की, तो मैं इस बात पे आना चाहूंगी कि पहले जनरली लोग जब कोई प्रोफेशन की बात आती थी या करियर की बात आती थी तो डॉक्टर इंजीनियर इसी तरह से हम प्रोफेशन को लेते थे, तो उस समय आपके लिए कितनी मुश्किल हुई थी ये बताने के लिए घर में कि मुझे रेडियो ज्वाइन करना है, क्या उतना ही रिस्पेक्टफुल करियर ऑप्शन था या आसान था या मुश्किल था?
3: देखिए, उस समय की तो बात ही अलग थी, बेबी इट वॉज वेरी लॉन्ग लॉन्ग बैक। उस समय इंजीनियरिंग में भी लोग बहुत ज्यादा नहीं आते थे, हमारे क्लास में ओनली 4 गर्ल्स वे थे एंड रेस्ट ऑफ द पीपल वे बॉयज, एंड घर से भी थोड़ा

0: वो रहता था कि अच्छा इतने साल 4 साल का इंजीनियरिंग करेगी फिर ये है, उस समय मतलब लोगों को बस ये रहता था कि लड़की बड़ी हो गई तो शादी कर दो. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर हु स्टूड बाई मी एंड आई एम द ओनली चाइल्ड. तो उन्होंने मेरे को पूरे समय सपोर्ट किया पढ़ाई में और मेरे को इंजीनियरिंग करने को दिया. लेकिन दादी ने फिर उन्होंने बोला कि नहीं बस हो चुका पढ़ाई वढ़ाई. तो एग्ज़ाम तो दे दिया था मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का,
1: जी
0: रिजल्ट नहीं निकले थे मेरे,
1: जी
0: तो मुझे उन्होंने, शादी हो गई मेरी. शादी के बाद फिर रिजल्ट्स आए और मुझे, आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट द AIR इलाहाबाद, नहीं तो शायद नौकरी भी नहीं होती.
1: ओके
0: एंड
1: ओके ड्यूरिंग
0: इसमें
1: दोज
0: लेकिन
1: डेज
0: सबसे बड़ी बात, मैं आई विल उस समय की मैं बोलती हूँ कि जॉइंट फैमिलीज होती थी. माई फादर इन लॉ जस्ट सेड वन वर्ड, वन सेंटेंस, ही केम टू ड्रॉप मी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई जॉइनिंग टू AIR इलाहाबाद एंड ही टोल्ड मी यू वर्क सिंसियरली एंड डेडिकेटेड वे सो दैट यू बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर पीपल. और वो बात तो मैंने गांठ बांध ली
1: दैट वाज
0: और
1: क्वाइट अ सपोर्ट क्वाइट अ
0: बिल्कुल.
1: सपोर्ट
0: और इसमें आई थिंक फैमिली सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन लॉज का अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच
1: बिल्कुल.
0: पाती.
1: आपकी लर्निंग्स की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं क्या कोई ऐसा फनी मोमेंट है जो आपको अभी तक याद हो, जो आप भूले ही ना हो अपनी ज्वाइनिंग के बाद, कोई ऐसा दिन रहा हो? मुझे लगता है शायद ज्यादा ही रहे होंगे, बट कोई एक ऐसा बताइए हमें इंसिडेंट.
0: देखिए बहुत सारी इंसिडेंट आज के ज़माने में फ़नी लगती हैं लेकिन उस समय तो जान पे
1: जी
0: आई रहती है.
1: बिल्कुल
0: एंड आई स्पेशली रिमेम्बर वन इंसिडेंट. हमारे उस समय आकाशवाणी के प्रोग्राम का लोग काफ़ी आया करते थे, दर्शक भी बहुत होते थे. एंड हम लोग को समझिए आज के ज़माने में शायद आप लोग इसको सोच भी नहीं पाएंगे, 2 मिनट का भी ब्रेक डाउन होता था. दैट वॉज टेकन एज अ मेजर ब्रेक डाउन एंड द पर्सन जिसके अंतर्गत हुआ है उसको वो करना पड़ता था कि एक्सप्लेन करना पड़ता था कि क्यों मेजर ब्रेक डाउन, और बेबी इट विल गो टू योर CR ऑल्सो.
1: बहुत स्ट्रिक्ट हुआ
0: बहुत स्ट्रिक्ट
1: करते
0: हुआ
1: थे
0: करते थे.
1: जी.
0: तो एक बार हमारे, और आकाशवाणी फेमस है अपने बिल्कुल टाइम से प्रोग्राम स्टार्ट करने
1: जी
0: पर, एक बार हमारे यहाँ पे इलाहाबाद में आए थे, एक गायक आए थे. रात के टाइम में करीब 8 बजे हम लोग की प्रोग्राम शुरू होने वाला था संगीत का, बाहर एक ऑडिटोरियम में
1: जी
0: सारे लोग बैठे हुए थे. अचानक उन्होंने रात 8 बजे डिमांड कर दी, मुझे गरम दूध चाहिए और पान चाहिए, उसके
1: जी
0: बगैर मैं जाऊंगा नहीं स्टेज पे. हम लोग उस समय मतलब दौड़ रहे हैं कि कहाँ से गरम दूध मिलेगा, बिल्कुल बिकॉज ऑडियंस वॉज देयर एंड वी हैड टू स्टार्ट द प्रोग्राम. सो उस समय जान सांसत में आई होती
1: सो
0: है.
1: ड्यूरिंग द प्रोग्राम उन्होंने
0: यस, इट
1: ये
0: वॉज
1: डिमांड रखी.
0: ड्यूरिंग, यस
1: 90 ईयर्स हमारे आकाशवाणी के कंप्लीट हो रहे हैं,
0: जी
1: होने वाले हैं
0: जी
1: जल्दी ही. तो इन 90 ईयर्स का जो पूरा टोटल मैसेज है वो आप क्या देना चाहेंगे जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए, जो आरजेइंग के फील्ड में आना चाहते हैं या टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं या आकाशवाणी से किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
0: देखिए मैं तो यही बोलूंगी कि यू कैन कम एंड लिव योर ड्रीम्स, क्योंकि तकनीक एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको अपने भीतर की जो प्रतिभा है या जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको बिल्कुल दिखा सकते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि ब्रॉडकास्टिंग का एक स्कोप है कि इतने सारे लोगों को इफेक्ट करने की क्षमता रखता है,
1: जी
0: तो मास कम्युनिकेशन इसीलिए कहा जाता है. और आज के डेट में जहाँ पे कम्युनिकेशन आज बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप तो जानते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अगर किसी में वो पैशन है और कुछ करना चाहता है, अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करना चाहता है या कुछ उस तरह की प्रतिभा है, तो बिल्कुल आना चाहिए इसमें.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
1: एक सवाल मेरा और है आपसे यहाँ
0: हाँ
1: पर.
0: जी
1: जब आपने ज्वाइन किया या आपके टाइम पर मास कॉम इतना पॉपुलर नहीं था एज अ सब्जेक्ट एज अ करियर.
0: अगर सच बताऊँ वास्तव में आप ठीक कह रहे हो सर, मास कम्युनिकेशन वाज नॉट अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट. लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है
1: बिल्कुल
0: एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे बिकॉज आई कम फ्रॉम प्रयागराज इलाहाबाद एंड इट वाज अ वेरी वेरी वाइब्रेंट आर्टिस्टिक सीन दे,
1: ट्रू
0: क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे
1: नेचर से जुड़े
0: और
1: हुए हैं.
0: हाँ नेचर से भी, और बहुत सारे फंक्शन हुआ करते थे आपके, ड्रामा कंपटीशन से लेके म्यूजिकल फेस्टिवल. तो और मेरे फैमिली में मेरे

0: पेरेंट्स एज वेल एज मेरे माय इन लॉज दे वेर इनटू दैट फील्ड. तो मुझे बहुत कुछ एक्सपोजर मिला उनकी वजह से, ये सब देखने का और सुनने का और जानने का. तो एक वो आप कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस में वो धीरे धीरे धीरे धीरे
1: रमता गया
0: आप जानते गए. प्लस हमारी नौकरी तो है ही, तो प्रोफेशन में भी जब लोग फील्ड स्टेशन में रहते हैं तो यू आर सपोज टू डू, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए डायरेक्टरेट या बड़ी जगह में आपको स्पेसिफिक काम होते हैं, लेकिन जब आप स्टेशन पे जाते हैं आपको मतलब कहते हैं ना कि ईंटे से लेके और पूरा स्टूडियो तक सब देखना पड़ता
1: मल्टीटास्क. मैं वही आपसे अब क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि पहले क्या, अब तो स्पेसिफिकली हमको एक टास्क असाइन कर दिया जाता है ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस समय तो यही चलता था और मुझे लगता है सब कुछ आना बहुत अच्छा होता था कई बार. तो वो सारी चीजें मल्टीटास्किंग आपको यहाँ आकर सीखने को मिली या आप में पहले से ही इतनी काबिलियत थी कि आप मल्टीटास्किंग करने के लिए तैयार थी?
0: नहीं नहीं, पहले से तो नहीं पता होता है किसी को भी, फ्रॉम जस्ट रॉ फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज. तो आई एम वेरी थैंकफुल दैट प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. मतलब क्योंकि मुझे आते ही इंस्टॉलेशन ऑफिसर बना दिया. हमारे झूसी में एक हाई पावर ट्रांसमीटर इंस्टॉल हो रहा था और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि किस तरह से चीज़ें होती हैं या किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है. तो माई बॉस टॉट मी और बहुत डांट के सिखाते थे कि ईंटों को समझना सीखो, ये ऑरेंज वाली ईंटें होती है, कच्ची ईंटें होती है, वो नहीं लगनी चाहिए.
1: आजकल स्कूल्स में भी डांट बंद हो गई है, ऑल्दो डांटना इज वेरी गुड, थोड़ा हम
0: बहुत
1: डर कर सीख लेते थे वो अच्छी बात थी, थोड़ा डर होना जरूरी है. बिल्कुल. अब हम आते हैं, हमने इतनी सारी बातें कर ली है, मैं एक चीज और पूछ लूं फिर हम आखिरी आपसे बात करते हैं कि इन सारे प्रोसीजर के दौरान क्या कभी आपको ऑन एयर जाने का भी मौका मिला, कभी ऐसा हुआ? क्योंकि मुझे लगता है मल्टीटास्किंग में वो भी शामिल है.
0: जी हाँ, मुझे कई बार मिला है बिकॉज आई वॉज अ स्टेशन इंजीनियर इन दूरदर्शन शिमला. तो वहाँ पे जैसे बड़े शहरों से थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि गुवाहाटी या इवन शिमला में भी दूरदर्शन का, आकाशवाणी का तो बहुत लोग सुनते थे और बहुत उसमें चार्म था लोगों का. तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते थे कि कहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. तो टेक्निकल एंड प्रोग्राम रिलेटेड चीज़ों में हमारे स्टेशन डायरेक्टर और मुझे कई बार वो व्यूअर्स के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम लोग को बैठना
1: पड़ता था. मुझे थोड़ा सा एक एग्जांपल देके यहाँ पर बताइए प्लीज.
0: ऐसे तो रैंडम कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ उस समय थोड़ा सा क्योंकि आप बैठे हैं जनता के सामने और जनता पूछ रही है तो यू हैव टू बी वेरी हम्बल और अलर्ट ऑल्सो. जैसे हमारे यहाँ पे वो जनरेटर चलता था एंड यू नो जनरेटर टू ट्रांसमीटर तक ऑन करने में थोड़ा सा गैप चला जाता है, इट टेक्स टाइम बिकॉज एक के बाद एक चीजें ऑन होती हैं और उसी तरह से. तो आम लोगों को नेचुरली ये समझ में नहीं आता है, तो उनको गुस्सा आता था कि हम ये प्रोग्राम देख रहे थे और बीच में से ये कट गया और इतना सारा मेरा मिस हो गया और ये हो गया वो हो गया. तो उनका गुस्सा भी वाजिब है
1: जी.
0: हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे ये भी फैक्ट है कि टेक्निकली अगर मान लीजिए लाइट गई है, जनरेटर आपका तुरंत ही ऑन हुआ है, लेकिन सारे सिस्टम को ऑन होने में देयर वुड बी अ डिले. तो उसको आपको थोड़ा सा समझाना पड़ता था, बोलना पड़ता था अच्छे से कि हम लोगों ने अपनी तरह से कोशिश की, ये इनेविटेबल है.
1: हमारे पास अभी समय की कमी है तो हमको अब जल्दी से इसको रैप अप करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी क्योंकि हमने सिक्के के एक पहलू की बात करी है, हमने आपकी ड्यूटीज की बात कर ली है, अब दूसरा पहलू आता है. हमने सुना है आप बहुत मधुर आवाज की मलिका हैं और क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेंड हैं, तो दो लाइन जो भी आपको पसंद हो जाए.
0: मुझे ऐसे ही रैंडमली कुछ याद आ रहा है, एक बहुत पहले मैंने आई थिंक व्हेन आई वाज इन स्कूल मैंने ये सीखा था, एक भजन है

0: बात है
1: क्या?
0: आपकी इस गायकी ने आज के हमारे पॉडकास्ट में ना दिन में ही चार चांद लगा दिया। ऑल्दो हमारी लाइट्स काम कर रही हैं, लेकिन इसने जो रोशनी बिखेरी है उसके क्या ही कहने हैं।
1: ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
0: थैंक यू सो मच।
1: कोई चलिए, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू सो मच टू यू टू, बिकॉज आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।
1: बहुत और आकाशवाणी अपने 90 साल संपूर्ण करने जा रहा है, उस बारे में आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे लिए तो आकाशवाणी हमेशा से ही दिल के करीब रहा है और आशा करती हूँ कि ये उत्तरोत्तर और प्रगति करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। बहुत धन्यवाद।
0: आज के लिए हम इजाजत देते हैं आपसे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू सो मच।
0: और साथ के साथ हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर काम करती है उसको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं हम, क्योंकि उनके बिना ये पॉडकास्ट अधूरा है। शालिनी चाहती है आपसे इजाजत। नमस्कार।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM रेनबो पर। इस वक्त स्टूडियोज घड़ी में रात के 9:30 और 30 सेकेंड्स हो रहे हैं। अब वक्त हुआ जाता है हमारे अर्थ प्रोग्राम नए रंग का। सामाइन की खिदमत में सना अलमास बावजीर का पुरखलूस आदाब। पेश है अर्थ प्रोग्राम नए रंग।

आगाज पर सुनिएगा हर्फे ताबिंदा, तहरीर और पेशकश होगी फहमिदा फहमोश की। इसके बाद आप सुन सकते हैं भुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही हम बात करेंगे ब्रदर्स डे क्यों मनाया जाता है और इसका महत्वपूर्ण क्या है, इस दिन की अहमियत पर हम रोशनी डालेंगे।

और फिर आप जानेंगे कसाई लफ्ज की कहानी कि कसाई लफ्ज की ईजाद कैसे हुई और कब हुई, इसे कसाई क्यों कहा जाता है। और आज हम बातचीत करेंगे शिरोफेनिया बीमारी के मुताबिक।

0: तो आइए दोस्तों बज्म का आगाज करते हैं हर्फे ताबिंदा से।
1: हमदर्दी इंसानियत का वो रोशन वस्फ है जो मुआशरे को जोड़े रखता है। हमदर्दी इंसानियत की मेराज है। आज के हर्फ ताबिंदा में हमदर्दी के बारे में हम आपको बताएंगे। हमदर्दी सिर्फ किसी के दुख पर अफसोस करने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द को अपने दिल में महसूस करने और उसे बांटने का नाम है। बकौल शायर, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर वो बयां। एक दूसरे के काम आना ही असल जिंदगी करार दिया गया है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, हुवे पहलू नशीं जितने वो सब हमदर्द ठहरे, हुवे पहलू नशीं जितने वो सब हमदर्द ठहरे, जो उठे दूर से वो बज्म में बेगाने निकले। अगर किसी के जख्म पर मरहम रखना मुमकिन ना हो तो कम अज कम मीठे बोल से उसका दिल जीतना भी हमदर्दी है। बकौल शायर, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। हमदर्दी वो जुबान है जिसे गूंगे बोल सकते हैं और बहरे सुन सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना सीख लें तो ये दुनिया जन्नत का नमूना बन सकती है। किसी की मदद करते वक्त ये याद रखें कि खुलूस दिल से जो हमदर्द बनकर पास आता है, खुलूस दिल से जो हमदर्द बनकर पास आता है, वही इंसान दुनिया में सुकून कल्ब पाता है। हमदर्दी से मुआशरे में तलखी कम होती है और लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। दूसरों की मदद करने और उनका दुख बांटने से इंसान को खुद भी इत्मीनान नसीब होता है। घर हो या ऑफिस, अगर आप दूसरों के मसाइल के तय हमदर्दी रखते हैं तो आपके ताल्लुकात में मजबूती आती है। जब कोई अपनी परेशानी बताएं तो उसे गौर से सुनना हमदर्दी की पहली सीढ़ी है। जरूरी नहीं कि हमदर्दी हमेशा बड़ी रकम से हो। एक मुस्कुराहट या दिलासे का एक जुमला भी बड़ी हमदर्दी

0: हो सकता है। अगर आप भी अपने अंदर हमदर्दी का जज्बा बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना एक छोटा सा काम कर दें, जैसे कि किसी उदास चेहरे को मुस्कुराहट देने की कोशिश करें, किसी की बात को या फिर किसी गमजदा की बात को बगैर टोके मुकम्मल खामोशी और तवज्जा से सुने। रास्ते में किसी जरूरतमंद की, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, मदद कर दे। रास्ते से तकलीफदा चीज हटाएं, बुजुर्गों की मदद करें। हमदर्दी सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, बल्कि कायनात का पूरा निजाम एक दूसरे की मदद और हमदर्दी पर टिका हुआ है। जैसे दरख्त दूसरों को साया और फल तो देते हैं, लेकिन खुद धूप सहते हैं। दरिया अपनी प्यास खुद नहीं बुझाता, बल्कि जमीन को सैराब करता है। अगर हर इंसान अपने दायरे में सिर्फ एक फर्द के साथ हमदर्दी का रवैया अपना ले, तो पूरा समाज अमन और मोहब्बत का गहवारा बन सकता है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि दुनिया में वही लोग अच्छे जो दूसरों के काम आते हैं। आइए हम भी अपने अंदर दूसरों के लिए तड़प, एहसास और हमदर्दी पैदा करें।
1: अभी आप सुन रहे थे हर्फ़े ताबिंदा, जिसको पेश कर रही थी फहमिदा फहमोश। जी हाँ दोस्तों, आगे भी हम आपसे ढेरों सारी बातें करेंगे और आप आगे सुनेंगे भुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में बेहद खूबसूरत सा ये गीत।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं अर्थ प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही आज हम बात करेंगे ब्रदर्स डे क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, इस दिन की अहमियत पर हम रोशनी डालेंगे। और साथ ही हम आज बात करेंगे कसाई लफ्ज़ की कहानी क्या है और इस लफ्ज़ की ईजाद कैसे हुई, और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे शिज़ोफ्रेनिया बीमारी के मुतालिक। सुरीले गीतों का सफ़र हम शुरू करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।

हाँ जी बिल्कुल, वक्फे के बाद हम फिर हाजिर हैं मनचले गीत लेकर। और जैसा कि हमने अंतराल से पहले कहा था कि आज हम बात करेंगे कि ब्रदर्स डे क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इस पर हम जो है ना रोशनी डालेंगे। हाँ जी बिल्कुल, कि ब्रदर्स डे हर साल 24 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद भाइयों की कुर्बानियों और इनके बेलौस प्यार, बचपन की यादों और इनकी ज़िंदगी में अहमियत का एतराफ़ करना है। इसे मनाने के चंद उसूल भी ये हो सकते हैं कि खालिस रिश्तों का एहतराम, जैसा कि ये दिन अपने सगे भाइयों की खदमात और ख़ानदानी रिश्तों की मजबूती का जश्न मनाने के लिए वक्फ है। दोस्तों के लिए इजहार तशक्कुर, हाँ जी बिल्कुल, इस दिन सिर्फ सगे भाइयों को ही नहीं बल्कि कज़न्स और करीबी दोस्तों को भी सराहा जाता है, जो वक्त के साथ साथ भाइयों जैसा किरदार यकीनन अदा करते हैं, जैसे कि बचपन की यादें और उनकी मदद, ज़िंदगी में हर अच्छे और बुरे वक्त में साथ देने वाले और बचपन की शरारतों में शरीक भाइयों के लिए शुक्रगुजारी का मौका फराहम करता है।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं अर्थ प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही हम बात कर रहे हैं कि ब्रदर्स डे क्यों मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रदर्स डे हर साल 24 मई को मनाया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, अपने भाइयों के साथ इस दिन को मज़ीद ख़ास बनाएं और इस दिन के ख़ास मौके पर अपने भाइयों को स्पेशल फील करवाएं और उन्हें इस बात का एहसास ज़रूर करवाएं कि वो घर परिवार में किस तरह की अहमियत रखते हैं और बहनों के लिए उनके भाई कितने अहम कितने ख़ास होते हैं। ये तो खैर लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, मगर भाइयों को ख़ास एहसास स्पेशल फील ज़रूर करवाया जा सकता है, जैसे चंद अच्छी यादों के ज़रिए, तो कुछ बचपन की कहानियों के ज़रिए, तो कुछ ख़ास तहाइफ देकर।

0: भैया।
1: जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि 24 मई को हर साल ब्रदर्स डे मनाया जाता है। स्टूडियोज़ की घड़ी में इस वक्त 9:55 और 8 सेकेंड्स हो रहे हैं और घड़ी हमें टिक टिकी बांधे इशारा कर रही है कि भाई अब तो वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं अर्थ प्रोग्राम नए रंग। जैसा कि हमने कहा था कि अंतराल के उस पार आपका इंतजार कर रहा है, यानी कि ढेरों सारे मनचले गीत। और साथ ही हम अब बात करने वाले हैं कसाई लफ्ज़ की कहानी के मुतालिक। जी हाँ दोस्तों, कसाई लफ्ज़ की कहानी क्या है, आइए जानते हैं कि कसाई किसे कहते हैं।

की कहानी के मुताबिक। जी हाँ दोस्तों, कसाई लफ्ज की कहानी क्या है, आइए जानते हैं कि कसाई किसे कहते हैं, इस लफ्ज की शुरुआत कैसे हुई, इस लफ्ज के पीछे की कहानी क्या है, वो सारी डिटेल हम जो है आपको देंगे। हमारी साथी लिखती हैं कि कसाई लफ्ज, कसाई का इमला भी बहस का मौजू बना हुआ है, अक्सर लोग इसे स्वाद से भी लिखते हैं और वो इसे मायने में अरबी अल्फाज कसाब की बदलती हुई शक्ल समझते हैं। कसाब अरबी लफ्ज कसब से मुश्ताक है, हाँ जी बिल्कुल, जिसका मतलब टुकड़े यानी कि पारचे करना होता है, यानी कि टुकड़े टुकड़े करने के होते हैं। आगे भी हम जो है ना कसाई लफ्ज की कहानी आपसे हम मजीद जो है ना एलाबरेट करके बातचीत करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्म गीत। साथ ही हम बात कर रहे हैं कसाई लफ्ज की कहानी। जी हाँ, क्योंकि कसाई गोश्त के पारचे करता है, इसीलिए ये लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ ज़बानदान ये सिफारिश करते हैं कि इस लफ्ज को सीन से कसाई लिखा जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि ये लफ्ज कसावस से मुश्ताक है। जी हाँ, जिसका मतलब दिल की सख्ती और बेरहमी होता है। इस तरह ये लफ्ज़ बिलवास्ता जानवरों को ज़बह करके इनका गोश्त फरोख करने वालों के लिए पेशे को जाहिर करता है।

तो दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म दागदफेर से लिया गया कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत। जी हाँ दोस्तों, हम आगे बात करेंगे आलमी यौमी शिज़ोफ्रेनिया के मुताल्लिक, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म साजन से लिया गया बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत।

0: FM Rainbow 101.9।
1: जी दोस्तों, आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत। जी हाँ दोस्तों, जैसा हमने कहा था कि आज हम बातचीत करेंगे आलमी यौमी शिजोफ्रेनिया बीमारी के मुतालिक। जी हाँ दोस्तों, हर साल 24 मई को मनाया जाता है आलमी यौमी शिजोफ्रेनिया। हर साल 24 मई को मनाया जाता है। इसका मकसद इस पेचीदा दिमागी बीमारी के बारे में माशरती शऊर बेदारी करना है, मरीजों को दरपेश मुश्किलात को समझना और इनके इलाज में हायल समाजी बदनामी को खत्म करना है। शिजोफ्रेनिया क्या है? आपके भी मन में ये सवाल उमड़ रहा होगा कि भाई ये बीमारी क्या है, ये बीमारी क्यों होती है, यानी कि क्या ये बीमारी किसी से फैलती है या किसी के आसपास रहने से होती है। आपके इन तमाम सवालों के जवाब हम जरूर देंगे कि शिजोफ्रेनिया एक इंतहाई पेचीदा और दायमी दिमागी आरजा है। जी हाँ बिल्कुल, इस बीमारी में मुब्तला अफराद की सोच, जज्बात और हकीकत को परखने की सलाहियत बुरी तरह से मुतासिर होती है। ये मर्ज आम तौर पर जवानी के आखिरी हिस्से या फिर आप यूं कह लें कि इब्तदाई जवानी में जाहिर होता है और मरीज की रोजमर्रा की जिंदगी, तालीमी और पेशा वाराना कारकर्दगी पर गहरे मनफी असरात मुरतब करता है। हम आगे भी इस बीमारी के मतलब आपसे मज़ीद गुफ्तगु करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपके मनोरंजन का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपका मनोरंजन ही हमारा सबसे बड़ा फरीजा है।

हम बात कर रहे हैं आलमी योम शिजोफेनिया, वर्ल्ड शिजोफेनिया डे के मुतालिक, जो हर साल 24 मई को मनाया जाता है। और इसके अहम अलामात ये होते हैं कि शिजोफेनिया की अलामात को बुनियादी तौर पर तीन हिस्सों में भी तकसीम किया जा सकता है, जैसे कि वहमी ख्यालात, यानी कि मरीज़ को ऐसे पुख्ता और गलत ख्यालात हो जाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। उदाहरण अगर हम बताएं आपको कि मिसाल के तौर पर ये सोचना कि कोई इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या कोई इन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, जैसा कि मान लीजिए कि उस दीवार पर कोई छवि सी दिखना, कोई परछाई सी दिखना, या फिर उस पर्दे के पीछे कोई है, इस तरह का वहम उस पर गालिब होता है जिस किसी को भी ये बीमारी होती है या वो शख्स इस बीमारी में मुब्तला होता है। इसे हम वहमी ख्यालात कहते हैं। और दूसरी सतह पर यह आता है कि हसाबाती धोखा, यानी कि मरीज को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं या चीज़ें नज़र आती हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं होती, जिसका ज़िक्र हमने जैसा कि अभी आपसे किया कि अगर कोई परछाइयाँ उन्हें नज़र आती हो, यानी कि दीवार पर किसी की गैर ज़रूरी परछाई नज़र आना, या एक तरह का उस शख्स को इस चीज़ का वहम होना कि बार बार उन्हें कोई देख रहा है, कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है, इस तरह का वहम ये जो बीमारी में मुब्तला होता है इंसान, उसको ये हमेशा खदशा लगा हुआ होता है। और तीसरे सतह पर यह आता है कि गैर मनज़म सोच और गुफ्तगु, मरीज़ की बातचीत बेरब्त हो जाती है और वो अपनी ख्यालात को तरतीब देने में नाकाम रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे भी हम इस बीमारी के मुतालिक मज़ीद आपसे गुफ्तगु करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम नए रंग, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात के 10:30 और 10 सेकंड हो रहे हैं और साथ ही हम बातचीत कर रहे हैं आलमी यौम शिज़ोफ्रेनिया बीमारी के मुतालिक, जो कि 24 मई को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके 3 अहम मकासद होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि वहमी ख्यालात, हसियाती धोखा और गैर मुनज़्ज़म सोच और गुफ्तगू। जी हाँ, आगे भी हम इसके मुतालिक मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपको वहमी ख्यालात से दूर लेकर जाएंगे हम, कहीं प्रेम की दुनिया में

हमने जितने भी अहले ज़ौक देखे हैं सभी के सीनों में रोग देखे हैं, और भला इस रोग से कौन बच पाया है ना? लेकिन शिज़ोफ्रेनिया बीमारी से बचा जा सकता है, वो कैसे हम आपको बताते चले। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी की कतई वजह ताहाल वाज़े नहीं हुई है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक जीनियाती अवामिल यानी कि अगर ख़ानदान में किसी को ये बीमारी हो तो इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं, और दिमागी केमिकल्स में अदम तवाज़ुन यानी कि दिमाग में मौजूद कीमियाई मादों जैसे कि डोपामाइन का तवाज़ुन बिगड़ना, और माहौलियाती दबाव। जी हाँ, ये बहुत अहम है कि शदीद ज़हनी दबाव, बचपन में किसी सदमे का सामना करना या वायरल इन्फेक्शन होना, ये एक वजह हो सकती है। और अगर इलाज और देखभाल के मुतालिक अगर हम बात करें तो इस बात का इंकशाफ ज़्यादा होता है कि अगरचे शिज़ोफ्रेनिया एक ता हयात रहने वाली बीमारी है, लेकिन मुनासिब इलाज और देखभाल से मरीज़ एक बेहतर और बेहतरीन और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बाबा जीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही हम बात कर रहे हैं आलमी योम शिजोफेनिया, वर्ल्ड शिजोफेनिया डे के मतलब। जी हाँ दोस्तों, अगर अद्वियात के मतलब हम बातचीत करें तो माहिर नफ्सियात साइकेट्रिस्ट की तजवीज़ करदा अद्वियात दिमागी केमिकल्स को मतवाजन रखने में मदद करती हैं, और नफ्सियाती मशावरत साइकोथेरेपी मरीज की काउंसलिंग की जाती है ताकि वो हकीकत को समझ सके और अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ अंजाम दे सके। माशराती ताउन ये बहुत ही अहम सतह पर आता है कि माशरती ताउन इस मरीज़ के लिए क्यों ज़रूरी है और किस हद तक ज़रूरी है, और इसका भरपूर जो है सामने वाला ताउन करना चाहिए। मरीज़ों के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाना और माशरे में इनके लिए मुस्बित माहौल पैदा करना इलाज का सबसे अहम, यकीनन ये अहम हिस्सा होता है।

जी हाँ दोस्तों, अगरचे कोई इस बीमारी में मुब्तला हो, यानी कि शिजोफेनिया, इस बीमारी में अगरचे कोई मुब्तला हो तो माशरती जिम्मेदारी ये बनती है कि शिजोफेनिया के हवाले से माशरे में फैली हुई गलतफहमियां और खौफ इस बीमारी से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि शिजोफेनिया कोई पागलपन या कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये एक तिब्बी हालात है, और मरीजों को अछूत समझने के बजाय इनका साथ दे इन्हें हर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए हौसला अफजाई करें, ताकि वो भी माशरे के कारामात शहरी बन सकें।

जी हाँ दोस्तों, सुरीले गीतों का सफर होता है यहीं पर खत्म। आइए अब सुनते हैं पयामे शब। तहरीर और पेशकश होगी सैयद नदीम अख्तर जेदी की।

0: सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जिंदगी कभी एक कामयाबी या एक नाकामी पर खत्म नहीं होती। इंसान जितना आगे बढ़ता है, उतने ही नए रास्ते और नए इम्तिहान उसके सामने आते हैं। इश्क सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, बल्कि अपने मकसद, ख्वाब और सच्चाई के लिए मुसलसिल जद्दोजहद का नाम है। इसीलिए मुश्किलात से घबराने के बजाय हौसला रखें, क्योंकि हर इम्तिहान इंसान को पहले से ज्यादा मजबूत और बावकार बनाता है। जो लोग सफर जारी रखते हैं, उनके लिए सितारों से आगे भी नई दुनियाएं मुंतजिर होती हैं।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ आज का अर्थ प्रोग्राम नए रंग इख्तिताम को पहुंचता है। इस वादे के साथ दोबारा जल्द होगी आपसे मुलाकात इन मीटर्स पर। तब तक के लिए आपके रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर को दीजिए इजाज़त।

0: मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिला

0: अधिकारियों और को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said The UCC will not

0: शिक्षा जी की गजल है।
1: इन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में जानें। तो आइए हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का उल्लेख किया है।
2: साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती हैं। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूं। इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत तो हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यही घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं, इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं।

0: इससे टकराव कम हो रहा है और लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। साथियों, मध्य भारत से भी एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे हैं। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसे ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी कि ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं, तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है।
1: प्रधानमंत्री जी के इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए जानते हैं कि इन वन्य जीवों की, इन पशु पक्षियों की जीवन शैली कैसी होती है और इनके संरक्षण के लिए क्या विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं एक परिचर्चा। हमारे विशेषज्ञ हैं श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग, गुजरात राज्य से, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक, कच्छ ईस्ट डिवीजन, वन विभाग, गुजरात राज्य। इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी।
2: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अप्रैल 2026 मन की बात में गुजरात, कच्छ और खास करके उन्होंने फ्लेमिंगो सिटी, फ्लेमिंगोस और साथ ही में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको यहाँ गुजरात में घोराट के नाम से जाना जाता है, वो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जिक्र किया था, उल्लेख किया था। आज उसी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित है और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी उपस्थित है। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी की ओर से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।
3: नमस्कार श्रोता मित्रों।
2: डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो हम बात यही करेंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने मन की बात में फ्लेमिंगो सिटी का जिक्र किया, साथ ही में फ्लेमिंगोस के बारे में भी बताया। तो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में फ्लेमिंगोस को लाखा जी के बाराते ऐसा शब्द से नवाजा था, तो ये लाखा जी के बाराते क्या है सर?
3: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कच्छ प्रदेश प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो, जिसको सुरखाब भी हम लोग कहते हैं, आते हैं हर वर्ष और यहीं पे अपना प्रजनन करते हैं। वहाँ पे एक एक पूरा जो है अंडा देके बच्चे पैदा करके और बच्चे बड़े होने तक कच्छ में रहते हैं। और जब ये सुरखाब मीन्स फ्लेमिंगो जब ये कच्छ के रण में जब आते हैं तो वो पूरा कच्छ की धरती एकदम गुलाबी और सफेद रंग से भर जाती है। तो उसी को देखते हुए जो हमारे यहाँ के जो भरवाड़ लोग हैं, जो पशुपालक हैं, उनकी एक जो ड्रेस होती है वो वाइट कलर की ड्रेस होती है और उसमें जब उन बारात के टाइम में, शादी ब्याह के टाइम में जब वो गुलाल वगैरह छिड़कते हैं तो पूरा गुलाबी और वाइट का एक कम्बिनेशन होता है। उस कम्बिनेशन को देखते हुए यहाँ इनको लाखा जी के बाराती कहकर भी बुलाया जाता है।
2: ये तो बहुत खूबसूरत बात है, फ्लेमिंगोस को यहाँ गुजरात में लाखा जी के बाराती के नाम से भी नवाजा जाता है। डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि ये जो सुरखाब फ्लेमिंगोस की आपने बात बताई, तो गुजरात के सिर्फ ये कच्छ जिला में ही आते
3: नहीं? एक्चुअली जैसे हम जानते हैं कि ये सेंट्रल

0: एशियन फ्लाईवे जो मध्य एशिया का पूरा फ्लाईवे है, तो प्रवासी पक्षी पूरे साइबेरिया और रशिया और इधर से पूरे मतलब सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेटरी रूट का एक ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और पूरा जो एक अनुकूल वातावरण भी कच्छ के पूरे रण क्षेत्र में रहता है। और जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि बहुत पक्षीविद भी यहाँ आते हैं, ऐसे डॉक्टर सलीम अली भी यहाँ बहुत टाइम पर तक रहे, और अभी भी सर्दी के टाइम में जब प्रवासी पक्षी और ये सब रहते हैं, तो पूरे कंट्री से पूरे देश से बहुत सारे पक्षीविद और जो जिनको बर्डिंग में रुचि रहती है वो यहाँ आते हैं। तो ये एक इनका एक टेम्परेरी रुकने का एक स्थल है कच्छ का रण, उसमें ऐसी अनुकूल परिस्थितियां है, हैबिटेट ऐसा है, तो काफी टाइम तक यहाँ रहते हैं। और खास करके जब ये फ्लेमिंगो आते हैं तो उनको ब्रीडिंग के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड यहाँ पे उपलब्ध है, जो पूरे दक्षिण एशिया में कहीं नहीं है। वो यहाँ पे ऐसा एक पूरा ब्रीडिंग ग्राउंड है और यहीं आके ये ब्रीडिंग करते हैं। और ये पूरा जो माइग्रेटरी रूट है वो हिंद महासागर तक जाता है, उसमें देश के अन्य भागों में भी ये जाते हैं, पर बहुत ज्यादा समय जो कच्छ के रण में ये रहते हैं, और गुजरात के अन्य भागों में भी ये जैसे नड़ा बेट का विस्तार है उसमें रहते हैं, फिर लिटिल रन ऑफ कच्छ जो कच्छ का छोटा जो रन है उसमें भी रहते हैं, फिर जामनगर के विस्तार में रहते हैं, पोरबंदर के विस्तार में जाते हैं, नल सरोवर में जाते हैं। तो अपने यहाँ पे गुजरात में खूब सारी वेटलैंड्स हैं, और जो जो वेटलैंड्स में अनुकूल वातावरण इनको रहता है वो सभी में ये समय समय पर जाते हैं। तो कुछ समय कच्छ में रहेंगे, कुछ दूसरे भागों में जाएंगे, देन अपने माइग्रेटरी रूट के हिसाब से आगे जाते रहते हैं, एंड देन जब रिटर्न होते हैं तो भी उनका वही सेम रूट रहता है।
1: आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कच्छ के बाग में ये विशेष करके आते हैं फ्लेमिंगोज माइग्रेटरी बर्ड्स। डॉक्टर जयपाल सिंह, कोई पर्टिकुलर सीजन रहता है इनके यहाँ कच्छ में और गुजरात के अन्य भाग में जो माइग्रेटरी बर्ड्स रुकते हैं, खास करके फ्लेमिंगोज?
0: हाँ, ये बड़ा एक स्पेसिफिक सीजन रहता है यहाँ। जैसे अभी हम लोग देखेंगे गर्मी की ऋतु में यहाँ पे पूरा रण जो है वो सूखा होता है, उसमें एक सोल्ट पेन जैसा रहता है पूरा, और जैसे ही बारिश होती है तो वो पूरा रण जो है पानी से भर जाता है, जो छिछरा पानी होता है, बहुत गहरा पानी नहीं रहता है, और वो छिछरा पानी जो है वो इसके फ्लेमिंगो के रुकने के लिए खूब अनुकूल है, और उसके ब्रीडिंग के लिए आसपास में जो मिट्टी के कुछ टीले वगैरह होते हैं और एक ऊपर का जो भाग है वो बहुत अनुकूल होता है, इसलिए जो है ये इस एरिया में आके रुकते हैं। और खूब बड़ा प्रदेश जो इनको मिल जाता है, बड़ा क्षेत्र मिल जाता है जिसमें अनडिस्टर्ब मीन्स वहां पे कोई दूसरे व्यवधान नहीं है, कोई दूसरी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई घर और गांव नहीं है, ऐसा एक बड़ा सुंदर वातावरण का निर्माण यहाँ पे रहता है, तो उस वजह से ये यहाँ के रुकते हैं।
1: तो डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने जैसे बताया कि उसको एक बहुत सुंदर वातावरण मिलता है, तो ये जो उनका नेस्टिंग ग्राउंड है वो मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है?
0: ये तो ऐसे कहेंगे तो हम लोग जैसे कि ये तो हजारों हेक्टेयर विस्तार में है पूरा जो नेस्टिंग ग्राउंड और जहाँ आके रुकते हैं, और जो मतलब सैकड़ों हेक्टेयर विस्तार ऐसा है जिसमें ये आके अंडे देते हैं। और जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके बाद इनका आना शुरू हो जाता है जुलाई अगस्त से, फिर अपना अंडा देते हैं, फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, और देन ये फिर जो है आगे माइग्रेट करना शुरू करते हैं अलग अलग जगह।
1: जैसे कि आपने बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो मतलब इनका माइग्रेशन रूट कितना रहता है?
0: माइग्रेशन रूट तो इनका हजारों किलोमीटर होता है, जैसे साइबेरिया से आते हैं और पूरे जो है अपने हिंद महासागर के क्षेत्र तक जाते हैं, इवन चिल्का लेक और इस एरिया तक भी ये जाते हैं, और पूरे साउथ इंडिया में भी इनका विस्तरण रहता है। तो ये पूरा एक माइग्रेटरी रूट, काफी बड़ा इनका माइग्रेटरी रूट है।
1: श्रोताओ, हमारे साथ साथ आकाशवाणी स्टूडियोज में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित हैं। आयुष जी, आप बताएंगे कि कच्छ में कौन कौन से लोकेशन में फ्लेमिंगोस सुरखाब है वो पाए जाते हैं, पॉपुलेशन उसकी पाई जाती है?
2: नमस्ते श्वेता मित्र, कच्छ एक अनुकूल प्रदेश है फ्लेमिंगो के लिए, एंड जैसा साहब ने बताया भी तो यहाँ काफी विस्तृत विस्तार में ये मिलते हैं, बट जो अभी जो मेन ट्रेडिशनल एरिया की अगर हम बात करें तो एक फ्लेमिंगो सिटी करके जगह है जिसको अंडा बेट के नाम से भी कहते हैं, उसे पिंक सिटी भी कहते हैं, एंड ये डिस्कवर किया गया था सन 1886 में, उस समय के जो

0: महाराजा थे उस टाइम पे उन्होंने वो डिस्कवर किया था.
1: कच्छ
0: फिर
1: के महाराव ने.
0: जी फिर महाराव खेंगार थ्री इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक. एंड डॉक्टर सलीम अली साहब ने फिर 40 और 50 के दशक में यहाँ पे काफी भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि ये एक नायाब जगह है फ्लेमिंगो के लिए. उसके अलावा अभी हाल में कूडा करके एक जगह है, वहां पर इनका काफी डिपार्टमेंट ने भी इंटरवेंशन किया जिसकी वजह से वहां सक्सेसफुल इनका प्रजनन होता है, जिसकी वजह से वहां पे भी असंख्य मात्रा में देखने को मिलते हैं. इनफैक्ट प्रवासियों के बारे में मैं बात करूं तो जब हम रोड टू हेवन से प्रसार करते हैं तो उसके दोनों तरफ फ्लेमिंगो जब मौसम होता है तो देखने को मिलते हैं.
1: सबसे पहले तो श्रोता को हम बताएंगे कि ये रोड टू हेवन क्या है.
0: जी, रोड टू हेवन हमारा खावड़ा वाले एरिया से जो ढोलावीरा को कनेक्ट करता हुआ एक एक्चुअली एक रोड है जिसे कहते हैं रोड टू हेवन या फिर कह सकते हैं रोड ऑफ हेवन. इसके जैसे नाम से ही प्रस्तुत होता है तो ये कहते हैं कि जन्नत की सैर आप कर रहे हैं. ये इसका महत्व इसीलिए है कि आप देखिए जिस समय पानी सूखा हुआ होता है तो नमक की एक सफेद चादर होती है, आपको लगेगा जैसे आप आकाश में विचर रहे हैं. जब पानी भरा होता है तो यहाँ पे विभिन्न माइग्रेटरी बर्ड जिसमें मुख्यतः आपका फ्लेमिंगो सुरखाब वो होता है तो सफेद और गुलाबी रंग से वो पूरा का पूरा ढक जाता है. तो ये देखने में क्योंकि इतना बेहतरीन लगता है, इतना मोहक लगता है, इसीलिए इस रोड से प्रसार करते समय लोगों से कहते हैं कि रोड टू हेवन है.
1: और साथ में हम ये भी बता दें कि ये रोड टू हेवन है वो अभी अभी ही मतलब पिछले 4-5 साल से ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, जिसके दोनों साइड समंदर का पानी भरा हुआ रहता है. और जैसे कि आयुष वर्मा जी ने बताया तो जब आप ट्रैवल करते हैं धोलावीरा से खावड़ा तो ये आपको लगता है कि इट्स ए रोड ऑफ हेवन. आयुष जी आपने ये बताया तो हम श्रोता मित्रों को साथ में ये भी बताया एक बार जो उसका फ्लेमिंगोज है उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हो सकता है.
0: जी अगर मैं कच्छ की खाली बात करूं तो पिछले 5 वर्ष में जो हमारा एक अनुमान है वो ये है कि 3 से 4 गुना फ्लेमिंगो की संख्या बढ़ गई है. एंड हाल में ये संख्या अंदाजे 3 से 4 लाख हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी इसको कह सकते हैं. यही संख्या जस्ट 2020 में 1 लाख के आसपास थी. और ये भी गौरतलब है कि जब ये फ्लेमिंगो की हम बात करते हैं तो दोनों ग्रेटर फ्लेमिंगो एज वेल एज लेसर फ्लेमिंगो दोनों यहाँ पर आते हैं.
1: अच्छा आयुष जी, तो ये ग्रेटर फ्लेमिंगोस और लेसर फ्लेमिंगोस इसमें मतलब डिफरेंस क्या है, तफावत क्या है.
0: जी तो आपको अगर मैं फिजिकल डिफरेंसेस से बताऊं तो सर्वप्रथम तो जैसे ग्रेटर और लेसर है तो साइज में फर्क आपको दिखेगा. जनरली जो एक एडल्ट ग्रेटर फ्लेमिंगो है उसकी हाइट होती है 110 से लेके 150 सेंटीमीटर एवरेज, जबकि हमारा जो लेसर फ्लेमिंगो होता है वो 70 से लेके 95 सेंटीमीटर तक का होता है. तो एक तो साइज में डिफरेंस होता है. दूसरा लेसर फ्लेमिंगो जो है आपका वो काफी गुलाबी दिखेगा एज कम्पेयर टू ग्रेटर फ्लेमिंगो. ग्रेटर फ्लेमिंगो भी गुलाबी है लेकिन वो सफेद और ग्रे कलर का ज्यादा है. इनफैक्ट ये भी एक मजेदार बात है कि ये उनका बॉडीली अडेप्टेशन है. कैसे, एक ये जो हमने बात करी कि रण क्यों सूटेबल है, तो जैसा हॉफ साहब ने बताया यहाँ पर शैलो वाटर तो है. शैलो वाटर की वजह से क्या होता है, एल्गे क्रस्टेशियंस डायटम्स और ये उनकी मेन खुराक बनती है इन फ्लेमिंगोज की. जो हमारे लेसर फ्लेमिंगोज होते हैं वो सरफेस फीडर्स होते हैं, स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसको कंज्यूम करने की वजह से इनका जो कलर है वो गुलाबी आता है. जबकि जो हमारे ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं वो वेडर्स होते हैं, यानी वो पानी के थोड़ा सा अंदर सतह से जाके उनकी डाइट रहती है. तो ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा वो क्रस्टेशियंस भी कंज्यूम करते हैं, बट जैसा मैंने साइंटिफिकली बताया कि उनका जो कोट का कलर है गुलाबी वो ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से आता है. तो लेसर फ्लेमिंगो इसको ज्यादा कंज्यूम करती है और ग्रेटर फ्लेमिंगो इसको कम कंज्यूम करती है. तो आप देखिए प्रकृति में कैसे एक वातावरण से हमारी पूरी मतलब हमारी तो वही साथ साथ पक्षियों की भी एक पूरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होते हैं.
1: मतलब सर ये तो हम बोल सकते हैं कि ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है जिसे ये लेसर फ्लेमिंगोस और ग्रेटर फ्लेमिंगोस है उसका एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन अलग अलग रहता है. डॉक्टर जयपाल सिंह ये जो बताई फ्लेमिंगोस सुरखाब की संख्या, तो ये सुरखाब की संख्या उसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन काउंट के पद्धति कौन कौन सी रहती है.
2: ये जैसे फ्लेमिंगो
1: को जो बर्ड सेंसस का भाग हम लोग मानते हैं, और वो मोस्टली जो है डायरेक्ट काउंटिंग होता है, उसमें काफी सारे

0: इक्विपमेंट भी हम लोग यूज करते हैं, और उसमें बहुत सारे जो पक्षीविद हैं उनको हम लोग साथ में रखते हैं। साथ में बहुत कुछ एनजीओज रहते हैं, कुछ हमारे बर्डर्स रहते हैं जो इसका मतलब कंटिन्यूअसली हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, उनको साथ में रख के हम उसका डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं। पर जैसा कि हम देखें कि एक एक को काउंट करना तो बड़ा मुश्किल होगा, बट उसको हम जैसे इक्विपमेंट्स के माध्यम से उसके कुछ सैंपल करके और उनको देन मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो अंदाजित उसकी जो संख्या है उसका हम लोगों को पता चल जाता है।
1: श्रोताओ, फ्लेमिंगो सुरखाब के विशेष जानकारी तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमें डॉक्टर जयपाल सिंह, आप अपनी पसंदगी का एक गीत भी बताइए।
0: जैसे रहे ना रहे हम है का करेंगे, ये एक बड़ा सुंदर गीत है।
1: बिल्कुल, प्रस्तुत है स्वतः आपके लिए डॉक्टर जयपाल सिंह की पसंदगी का यह गीत।

0: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 इस कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए डॉक्टर जयपाल सिंह से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुर्खाब फ्लैमिंगोस की पॉपुलेशन एस्टिमेशन होती है तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं गवर्नमेंट के अलावा?
1: जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टाफ तो उसमें रहता है, पर उसमें जो काफी सारे पक्षीविद हैं, काफी जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं वो सब, और बहुत सारे बर्डर्स हमारे गुजरात में खास करके बहुत बड़ा बर्डिंग कम्युनिटी है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तो जिनको काफी रुचि रहती है पूरी बर्ड लाइफ में, तो वो साथ में रह के हम लोग एक अपना प्लान करते हैं, फिर उन सबको इनवाइट करते हैं, उनको सबके साथ रह के वो एक जो इनकी गिनती पक्षियों की है उसका कार्य हम लोग करते हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, ये फ्लेमिंगोस के पॉपुलेशन सेंसस हर साल होता है या कोई पीरियडिकल रहता है?
1: वैसे तो हम लोग हर 4 साल में एक बर्ड सेंसस का आयोजन करते हैं, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में जो विविधताएं होती हैं तो स्टाफ अपनी तरफ से भी हर साल वो पक्षी गिनती करने का कार्य करता है। जैसे कि नड़ावेट विस्तार है, उसमें अलग से अपना स्टाफ जो है वो एक अपना गिनती का कार्यक्रम रख लेता है, इसी तरह से नल सरोवर में रख लेता है, तो उससे पक्षियों की संख्या का अंदाजा हम लोगों को आता रहता है और डिफरेंट जो वैरायटी के बर्ड्स हैं उनकी भी संख्या का पता चलता रहता है। तो कभी कभी जैसे नल सरोवर जैसे विस्तार में कुछ अन्य विलक्षण पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं, जो जनरली माइग्रेट करके आए होंगे, पहले नहीं देखे गए हैं, बट कभी पिछले साल में भी ऐसे एक दो पक्षी देखे गए थे, और फिर नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि वही सेम पक्षी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
0: आयुष जी, जैसे कि आपने बताया कि जो कच्छ के महाराव थे महाराजा खेंगार जी, उन्होंने विश्व के समक्ष ये फ्लेमिंगो सिटी अंडाबेट का उजागर किया, ऐसे ही फिर बाद में सलीम अली जी ने भी जिक्र किया फ्लेमिंगोस का, तो मतलब जो एक ये पूरा नेस्टिंग कॉलोनी का एक फोटोग्राफ विश्व में प्रसिद्ध हुआ था
2: जी,
0: उसके बारे में आप बात करेंगे?
2: जी, तो ये जब फोटोग्राफ पॉपुलर हुआ, आज के शब्दों में बोले शब्दावली में जब वायरल हुआ, तो लोगों में काफी उत्सुकता जागी कि ये यहाँ पर हैं तो क्यों हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में यूं तो मतलब ये सब चीजें क्या हैं आप देखिए, तो ये जो टेक्स्ट बुक्स में चीजें थी वो लेसन अभी आम जनता के समक्ष एक आ पाता है इसकी वजह से। अगेन इससे ये भी था कि जब यहाँ पे संख्या ज्यादा देखने को मिली तो इसको और कैसे बढ़ा सके, इनके कंजर्वेशन के लिए हम काम क्या कर सकते हैं, ये एक डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तरीके थी। तो इसी चीज से प्रेरणा लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूडा करके एक हमारा स्थल है, इनफैक्ट उसको एक कुदरती संरक्षण ऐसे भी मिलता है कि वो हमारे कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ बीएसएफ का एक आउटपोस्ट है जो उसके आगे है, तो एक एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस मतलब मानव से थोड़ा सा वो आइसोलेटेड है, वहां पर हमने पिछले 5 वर्षों से डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि हम वहां पे अर्दन माउंड्स बनाए और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर जो फ्लेमिंगो है वो अपना अंडा ले डाउन कर सके। मैं जस्ट एक उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां पर इवन दो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में लाई करते हुए इंडिया में बहुत सारे पार्ट हैं, थाने में हमारा फ्लेमिंगो की काफी सारे देखने को मिलती है काउंट, पुलिकेट लेक में आपका उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, बट जो ब्रीडिंग है वो यहाँ कच्छ में काफी ज्यादा संख्या में होती है। हमने इसमें एक चीज ये देखी वहां पर कि अंडे जो ये ले डाउन करते थे अपने, वो रण विस्तार में पानी भर जाने के कारण उस अंडे का धोवाण बहुत ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल उसका ब्रीडिंग नहीं हो पाता था।
0: मतलब जो कुदरती परिवर्तन के हिसाब से फ्लेमिंगोस के अंडा कम होते जा रहे थे,
2: मैं ये नहीं कहूंगा कम होते जा रहे थे, बट ये चौमासे के समय में जब यहाँ पे आते थे और अंडा ले डाउन करते थे तो वो अंडा धुल जाता था। अभी जब डिपार्टमेंट ने ये कुछ अर्दन माउंट्स बनाए, सी शेप हम उसे डेजर्ट पॉन्ड कहते हैं, तो लीनियर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो इसपे वो जब अपना अंडा ले डाउन करते हैं वो अंडे का जो धोवाण है वो बहुत कम हो जाता है।

0: जाता है, जिसकी वजह से प्रजनन बहुत सक्सेसफुल हो पाया है। तो एक बड़ा कारण है कि क्यों फ्लेमिंगो की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
1: आयुष जी, जैसे आपने बताया कूड़ा सेट के बारे में, तो हम श्रोता मित्रों को यह भी बताए कि ये कूड़ा एक ऐसा एरिया है जहां पर मानव बस्ती बिल्कुल नहीं है और
0: जी
1: उसको मतलब कुदरती संरक्षण मिल रहा है।
0: जी
1: आयुष जी, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ में आपकी पसंदगी का एक गीत भी आप बताइए।
0: छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।

श्रोता मित्र, जैसे कि आप जानते हैं कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ के फ्लेमिंगो सिटी, लाखा जी के बाराती और उसके साथ ही साथ गुजरात में जिसको गोराड

0: के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, उसका भी जिक्र किया था, उल्लेख किया था। तो उसके संलग्न माहिती के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयपाल सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और गुजरात राज्य वन बल प्रमुख है, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित है। डॉक्टर जयपाल सिंह, हम श्रोता मित्रों को ये बताएंगे कि जो अभी घोराड़ द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, उसकी संख्या गुजरात में कितनी रह गई है, और जो एक IUCN की कैटेगरी होती है उसमें उसका क्या स्टेटस है?
1: श्रोता मित्रों, जो घोराड़ हम लोग गुजराती में कहते हैं उसको इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, और राजस्थान में उसको गोडावन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक IUCN की कैटेगरी में, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ही कम रह गई थी, तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लुप्त प्राय श्रेणी में इसको रख दिया गया है, क्योंकि जो है इसका प्रजनन कुछ कारणों से काफी कम हो गया था और संख्या लगातार घटती जा रही थी। जैसे हम यहाँ गुजरात की बात करें तो यहाँ केवल 4 पक्षी जो केवल मादा हैं वही रह गए हैं, और राजस्थान में इसकी संख्या अभी थोड़ी बढ़ गई है, और अभी करीब करीब 150 से 200 के बीच में कुदरती वातावरण में ये पक्षी हैं। उसके लिए काफी सारे प्रयास भी राज्य सरकारों ने किए हैं केंद्र सरकार के सहयोग से। ये एक प्राथमिकता का कार्यक्रम है कि ये क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशीज है जो लुप्त होने के कगार तक पहुंची, उसको कैसे हम फिर से पुनर्वसन कर सकें और पूरे जो है जिस एरियाज में ये प्रजाति पाई जाती है उनमें फिर से ये प्रजाति दिखने मिले। दूसरा जो है कि ये एक जो GIB के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक काफी बड़े आकार का पक्षी होता है, बहुत ऊंची उड़ान नहीं भरता है, और मुख्य रूप से ये घास के मैदानों में ही रहता है, और इसका जो अंडा भी जो देता है वो भी ग्राउंड पे ही देता है, कोई पेड़ पे ये कभी नहीं चढ़ता है, वो ये घास के मैदान में रहेगा, वहीं प्रजनन होगा और वहीं से जो है इसके बच्चे पैदा होके वहीं पे ये बढ़ेगा। तो जो दूसरे कुछ परिबल जो रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में, उन परिबलों में थोड़ा सुधार हो तो इसकी प्रजाति को हम फिर से बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, जो कि अब हम लोग हो रहे हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, साथ में हम ये भी बताएं कि ये जो घोराड़ है इसकी संख्या दिन ब दिन क्यों कम हो रही है?
1: इसकी संख्या कम होने के काफी सारे कारण हैं, क्योंकि घास के मैदान काफी विस्तारों में कुछ कम हो गए, तो जो हैबिटेट लॉस हम उसको कह सकते हैं वो हुआ। उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे परिबल के कुछ शिकारी प्राणी उस विस्तार में बढ़ गए, छोटे शिकारी जिनको कहते हैं, के जैसे गीदड़ है, तो फोक्स है, इस तरह के नेवला है, इवन जो थोड़े पक्षी शिकारी पक्षी हैं वो भी, तो उनके कारण भी जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा खतरा रहता है, और कुछ अन्य परिबल बरसात का ज्यादा होना, चक्रवात वगैरह हैं, कुदरती अन्य परिबल भी इसके कारण है। साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके वो भी एक कुछ हद तक एक कारण होता है कि उससे डिस्टर्बेंस वो एरियाज में होता है, तो वो भी एक उसका कारण होता है।
0: श्रोता मित्र, हमारे साथ कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी जी उपस्थित है। आयुष जी, आप ये बताइए कि घोराड़ की जो संख्या है उसके बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या प्रयत्न है?
2: केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रयासरत हैं कि हाल में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमारा घोराड़ है, जैसा साहब ने बताया, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो। तो एक ध्यान देवानी जो बात है कि अभी जो कच्छ में मौजूद घोराड़ हैं ये सब मादा हैं, इसलिए इनका प्रजनन एक बड़ी समस्या रही थी टू स्टार्ट विद। इनफैक्ट ये एक नोंदनीय बात है कि सरकार के प्रयासों को आप इससे आकलन कर सकते हैं कि एक डेडिकेटेड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी है हमारे। तो अभी यूं तो कई बार प्रयास किए गए हैं, बट अभी हाल में जंप स्टार्ट टेक्निक ब्रीडिंग की एक हमारी टेक्निक है जिसको हमने इसके प्रजनन के लिए उपयोग किया। इसमें इफेक्टिवली क्या होता है कि एक आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से जो अंडा होता है वो अंडा राजस्थान से लाया गया, और यहां पर जो मादा घोराड़ है तो उनसे उनको इंक्यूबेट कराया गया, और ये भी एक काफी दिलचस्प बात है कि एक मादा अपने अंडे को पहचानती है, इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल दिखने जैसा अंडा रखा जाए और उसकी नॉलेज के बाहर रखा जाए।
0: आयुष जी, ये आपने बताया कि राजस्थान से अंडा लाया गया है, तो राजस्थान से अंडा लाने वक्त कौन कौन से सावधानी

0: औचित्य रखनी पड़ती है।
1: जी, ये बहुत ही क्रिटिकल एक एस्पेक्ट होता है टेक्निकली अगर हम बात करें, क्योंकि आप देखिए ये अंडे का जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इसमें वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो पूरा सर्टिफाई करते हैं, वो ये भी बताते हैं कि किस परिस्थिति में इसको स्टोर करके लेके जाना है और किस परिस्थिति में इसे रिसीव करना है, इसका प्रॉपर पूरा जो वेटरनरी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं इसको बेचते समय भी और इसको प्राप्त करते समय भी। इनफैक्ट CZA की काफी टेक्निकल गाइडलाइंस भी हैं इसके बारे में, तो हमें काफी इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है हर तरीके से इसके लॉजिस्टिक्स में।
0: और जैसे कि आपने बताया कि मादा के पास जो अंडा है अपना वो हमें लेना पड़ता है, और जो आर्टिफिशियली इंसिमिनेशन से प्राप्त हुआ है अंडा उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि मादा के उसी वक्त अंडा के आसपास हाजिरी नहीं होनी चाहिए
1: जी।
0: तो ये कैसे फिजिबल होता है?
1: तो फील्ड स्टाफ बहुत पैनी नजर रखता है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व भी किया जाता है कि उस जो हमारा घोराण है उसका पैटर्न क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है। जैसे वो एक स्थान से अभी जाके अपने घास विस्तार में जाए तो किस समय जाती है और वो कब लौटती है, तो ये सब विंडो बेसिकली विंडो ऑफ टाइम हमारे जो फील्ड का स्टाफ है उसने पैनी नजर रख के ये एक्सरसाइज करी।
0: ये तो काफी मतलब फील्ड स्टाफ के प्रशंसनीय बात आपने बताई।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर जयपाल सिंह साहब ने बताया थे कि ये जंप स्टार्ट टेक्निक है, ये उसका इंडिया में प्रथम बार प्रयोग किया गया गुजरात में कच्छ में।
2: नहीं, इसमें मैं फिर से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भारत सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और खास करके दो राज्य सरकारें अभी ये हाल में राजस्थान और गुजरात, इनका एक संयुक्त कार्यक्रम है और ये एक नेशनल प्रोग्राम तरीके भी लिया गया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले साल शासन में जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग की थी उसमें भी इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इस पे भार दिया था, और उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम को बहुत हम लोग सावचेती से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें दो तरह के जो प्रजनन कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, एक है कि कुदरती तरीके से कि इन सीटू ब्रीडिंग, तो इन सीटू में दो चीजें होती हैं, एक तो जो मतलब ब्रीडिंग नेचुरली जो हो रहा है इस विस्तार में जो भी विस्तार में उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसको कंडीशन ऐसी दें कि जो बच्चे नए जन्मते हैं तो वो सर्वाइवल उनका बढ़े। और दूसरा मेथड है जो जंप स्टार्ट मेथड, ये भी एक टेक्निक है कि सीधा जो बच्चा जो है हम लोग जैसे आयुष ने बात किया कि अंडा हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो नए जो बच्चा जो उससे पैदा होता है तो उसका सीधा वाइल्डिंग हो जाता है, अदरवाइज जैसे हम लोग प्रजनन केंद्र कृत्रिम में हम लोग करें तो उसको वाइल्डिंग करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, जो उसका एक ह्यूमन इम्प्रिंट अगर उस पक्षी पे है तो वाइल्डिंग होना उसका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हम दो तरह के प्रयास है, उसका इन सीटू कंजर्वेशन भी चल रहा है और एक्सीटू भी चल रहा है। एक्सीटू में भी काफी अच्छी जो प्रयास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, और जैसे बात करूं तो इसी साल में कुल नए अभी तक 14 बच्चे इसमें जन्मे हैं जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है उसमें, और कुल संख्या अभी जो केंद्र में है 84 हो गई है। तो वो जो एक क्रिटिकल लेवल के जो पक्षी का हम लोगों को जरूरत है जिस तरह से ये कम होता जा रहा था, तो ये साथ में इस कृत्रिम के साथ जो हमारा प्राकृतिक के साथ में कृत्रिम प्रजनन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो उसमें अभी एक अच्छा नंबर संख्या जो हमारे पास उपलब्ध है जो प्रयास हुए उनके कारण, और उसमें से भी कुछ जो नए बच्चे अभी जन्मते हैं तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रयास है कि सीधा उनको हम लोग वाइल्डिंग करें, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक SOP भी बनाया गया है। उसके लिए एक ऑलरेडी एक हम लोगों ने मतलब राजस्थान में कैसा सेंटर छोटा तैयार किया है कि सीधा उसको वह छोटे बच्चों को ही वाइल्डिंग कर दें, तो उस तरह के प्रयास जो मतलब प्राकृतिक के साथ साथ में जैसे गुजरात में आयुष जी ने बात किया कि हमारे पास जो पक्षी हैं वो केवल फीमेल हैं तो वो केवल इनफर्टाइल एग हर साल देती हैं, तो वो इनफर्टाइल एग को फर्टाइल एग से रिप्लेस करके उससे नए बच्चे पैदा हों वो सीधे वाइल्डिंग होंगे, पर साथ साथ में जो अभी नए बच्चे जो इसके आ रहे हैं राजस्थान में उनको भी जो वाइल्डिंग के प्रयास है वो भी हम लोग गुजरात में भी अब फिर से हम लोग उसका प्रयास भी करेंगे।

0: के वाइल्ड में ये बच्चों को भी छोड़े, जिससे इसकी संख्या जल्दी से बढ़ना शुरू हो, और जो अभी 4 की संख्या हमारे पास है तो वो जल्दी से बढ़ने लगे, तो ये जो एंडेंजर्ड कैटेगरी है उससे एटलीस्ट लोकली हम लोग बाहर आ पाए।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने बहुत अच्छे तरह से बताया जंप स्टार्ट टेक्निक और साथ में जो नेचुरल टेक्निक है उसके बारे में। तो ये घुराड़ के वस्ते में संवर्धन हो तो उसमें जो चैलेंजेस है वो कौन कौन से है?
0: जैसे कि मैंने पहले बात किया था, एक तो इसका जो हैबिटेट होता है वो घास के मैदान होते हैं, और घास के मैदान भी बड़े मैदान इसको चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटे 2-4 हेक्टेयर के मैदान होगा तो उसमें इसका प्रजनन होगा और ये बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैदान छोटा होगा तो इसके ऊपर खतरा बढ़ेगा, तो उसमें हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं कि वो 8-10 हजार हेक्टेयर तक के बड़े मैदान कंटिन्यूअस पैच जो घास के हैं वो तैयार रहें। फिर हम लोग इसमें जैसे प्रोसोपिस है, इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कांटे वाली जाते हैं, उनको भी हटाएं ताकि ये उसकी जगह पे घास अच्छा आए, तो ये है। फिर उसमें जो ग्रेजिंग के कारण थोड़ा खतरा होता है तो उसमें कम्युनिटी के साथ मिलके हम ग्रेजिंग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। फिर अगर खुला विस्तार है तो उसमें गांव से फेरल डॉग्स का भी एक खतरा रहता है, तो वो फेरल डॉग्स को कंट्रोल करने का भी प्रयास है। फिर उसके साथ ही जैसे छोटे कार्निवोर्स इस विस्तार में हैं उनके ऊपर ध्यान रखें, और जो खास करके जो ब्रीडिंग पीरियड है उस टाइम में वो छोटे कार्निवोर्स को भी हम लोग वहां से हटा पाए, थोड़ा मजबूत उसका फेंसिंग कर पाए उस विस्तार की, ताकि वो एक सुरक्षित प्रजनन क्षेत्र के रूप में उपलब्ध हो, तब भी जो है जल्दी से इसकी बढ़ोतरी हो पाएगी।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, अभी अभी इसी साल गुजरात के 5वें एक जो वेटलैंड्स है जल प्लावित विस्तार, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो आप श्रोता मित्रों को, ये हमने बात किया फ्लेमिंगो सुरखाब, साथ में घोराड़, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, साथ ही साथ में कच्छ के एक अन्य विशिष्टता है जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, उसके बारे में भी आप बताइए।
0: जैसे गुजरात जो है एक वेटलैंड के लिए जो जल प्लावित विस्तार होते हैं उनके लिए खूब फेमस है, और कंट्री में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं गुजरात में हैं, करीब 17,000 के आसपास वेटलैंड्स हैं, वो विभिन्न जो पक्षी प्रजातियों के लिए भी बड़े अच्छे आश्रय स्थान रहते हैं। तो इसमें जो बड़े इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं तो रामसर कन्वेंशन के तहत इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। उसका एक बड़ा लंबा थोड़ा प्रोसीजर है कि उसका जो पहले एक एप्लीकेशन सबमिट होती है, उसके बाद उसका बड़ा गहन आकलन होता है, और वो आकलन के बाद ही उसको एक रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो अभी जैसे कच्छ में छारी डंड विस्तार जो रहा और एक वेटलैंड है उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है, बड़ा सुंदर एक वेटलैंड है और बहुत अच्छे संख्या में और अच्छी प्रजातियों के पक्षी उसमें आते हैं हर साल, तो उसको एक वेटलैंड इस रामसर साइट का दर्जा मिलना हमारे लिए एक गौरव की बात है।
1: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 अप्रैल 2026 के मन की बात कार्यक्रम में गुजरात कच्छ के फ्लैमिंगोस, फ्लैमिंगो सिटी, सुरखाब और साथ ही में घोराड़, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात की। इस बात के लिए विस्तृत मार्गदर्शन के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित रहे, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित रहे। आकाशवाणी और श्रोता परिवार के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: आपका भी खूब खूब धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें आज हमारा विषय था प्रकृति का संरक्षण। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों के संरक्षण के बारे में। हमारे विशेषज्ञ थे श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग गुजरात राज्य, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक कच्छ ईस्ट डिवीजन वन विभाग गुजरात राज्य। आपसे बातचीत कर रहे थे श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था राजेश खराड़ी का। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करने और दुनिया को अधिक विकल्प प्रदान करने में दोनों देशों का साझा हित है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु

0: पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरीद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सके। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Hill Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has registered a landslide victory in the re-poll for the Falta Assembly constituency. Mr. Panda won by over 1,09,000 votes in a seat widely regarded as a stronghold of the Trinamool Congress, whose nominee slipped to fourth place and forfeited his deposit. Prime Minister Narendra Modi congratulated Debangshu Panda for winning the Falta Assembly re-poll with a record margin. In a social media post, the Prime Minister said that the victory indicates the unwavering faith of the people of West Bengal towards the BJP. Union Home Minister Amit Shah said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. addressing the Janjati

सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। तुम्हारे होने के बाद जो कुछ भी है वही सब कुछ है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:11 और 47 सेकेंड। शुरू हो चुका है निशिगंधा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ के साथ।

वैसे ये तो सच है कि जिस वक्त का हम इंतज़ार करते हैं ये वही वक्त है। ऋषिगंधा में ये वक्त होता है दो ऐसे दिलों के मिलने का जो एक जैसा सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक सा करते हैं। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अगर साजन उस पार है तो फिर इंतजार किस बात का, हम बातों की ट्रेन लेकर पहुंच जाते हैं उसी पार। क्या कहते हैं आप, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। कुछ भी कहो, ये गाने हमारे मूड को थोड़ा सा फिल्मी तो बना देते हैं। जब मूड फिल्मी हो गया है तो क्यों ना फिर एक और इसी मूड का गीत सुन लिया जाए। अगला गीत आशा जी और रफी साहब की आवाज़ में।

मोहब्बत से भरे गीतों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये पुरानी यादों को जगा देते हैं, है ना। बिना पंख हम उड़ जाते हैं उन गलियों में जहाँ सुकून मिलता है और साथ साथ मिलती है खुशी। अगला गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

तुमच्या हो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। छिपने की जितनी कोशिश करोगे उतना करीब आएगा, और जब वो तुम्हारे जीवन में उतरेगा वो इतना गहरा होगा कि तुम्हारे प्रेम पर लिखी हर कविता फीकी पड़ जाएगी। सौदशमलविक मेगाहर्ट्स पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:44 और 13 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। निशिगंधा सुन रहे हैं आप। अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में।

अच्छा एक बात बताइए, जब कोई अपना जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं अचानक हमारे सामने आ जाए, तो दिल में ऐसी ही बहार आ जाती है ना? और हमारी इस म्यूजिक प्लेलिस्ट में भी बहार का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अगला गीत लता जी की आवाज़ में, अभी के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरीद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त वह है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा जी की आवाज़ के साथ।

मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ, यानी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 MHz पर। अभी जो आपने गीत सुना वो आवाज़ थी आशा जी की, और संगीत था ओपी नैयर का, और गीतकार थे कमर जलालाबादी। फिल्म का नाम था हावड़ा ब्रिज, और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में। और इस फिल्म की बात करें तो ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी अशोक कुमार और मधुबाला ने। अशोक कुमार ने एक ऐसे भाई का रोल इस फिल्म में निभाया था जो अपने भाई के हथियारों की तलाश में कलकत्ता आता है, और मधुबाला ने एडना नाम की एक कैबरे डांसर का यादगार किरदार इस फिल्म में निभाया था। और अगर इनकी एक्टिंग की बात की जाए अशोक कुमार और मधुबाला की, तो इन दोनों की जोड़ी ने इस फिल्म में चार चांद लगा दिए थे। और अब हम सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे साल 1964 में आई फिल्म लीडर का ये बेहद ख़ास गाना, जिसे नौशाद साहब के लाजवाब संगीत और शकील बदायूनी के शब्दों ने सजाया था। अगर बात करें इस फिल्म की, तो ये अपने दौर की एक बेहतरीन पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म थी। ख़ास बात यह है कि इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले दिलीप साहब ने लिखा था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार, वैजयंती माला और जयंत ने। अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:38 और 3 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत फिल्म आर पार से आप सभी के लिए।

0: फिल्म आर पार से सुना आपने ये सदाबहार गीत। आवाज थी शमशाद बेगम की, संगीत था ओपी नैयर का और गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1954 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था गुरुदत्त ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त साहब और शकीला ने। अगला गीत हम सुनते हैं किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में।
1: ये रातें, ये मौसम।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है 1:53 और 57 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने।

गीत सुहानी प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण

मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज गिवन डायरेक्शंस टू डेप्यूट अ टीम ऑफ प्रोफेसर्स एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज IIT मद्रास एंड IIT कानपुर टू असिस्ट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE इन इंश्योरिंग अ ग्लिच फ्री रीवैल्युएशन प्रोसेस. The decision has been taken in view of the developments and concerns raised by students and parents regarding the CBSE post-result services portal. At the Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, securing 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam's Da Nang. And that is the end of this news bulletin.

एक पूरा जीवन लुटाया जा सकता है प्रेम की तलाश में, एक पूरा जीवन लुटाया जा सकता है प्रेम की तलाश में। एक प्रेमी तो ठहरा बनकर सबके हिस्से आना ही चाहिए। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं लता जी के साथ, लता जी की आवाज के साथ।

तुम लौट कर आओ या ना आओ, चाहो या ना चाहो, जो तुम्हारा इंतजार करता है तुम्हें आधा पा लेता है।

प्रेम में पड़ी लड़कियां अपनी पीड़ाएं छिपाकर पोंछती हैं प्रेमियों के आंसू। प्रेम में पड़ी लड़कियां अपनी पीड़ाएं छिपाकर पोंछती हैं प्रेमियों के आंसू। प्रेम में पड़े लड़के अपनी छिपाई पीड़ाएं बांटने लगते हैं प्रेमिकाओं से। प्रेम महान नहीं है, केवल पीड़ाओं का प्रवाह है।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

खुद को इतना दुनियादार नहीं कर सकते, आधे दिल से पूरा प्यार नहीं कर सकते। रिश्ते तोड़े, मल्लाहों से नाव जला दी, अब हम दोनों दरिया पार नहीं कर सकते। ये भी एक तरकीब है दुश्मन से लड़ने की, गले लगा लो जिस पर वार नहीं कर सकते। खुदा को, खुद को इतना दुनियादार नहीं कर सकते, आधे दिल से पूरा प्यार नहीं कर सकते।

मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:45 और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

जब भी अंजामे मोहब्बत ने पुकारा खुद को, जब भी अंजामे मोहब्बत ने पुकारा खुद को, वक्त ने पेश किया हमको मिसालों की तरह।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने विशेष प्रावधान करके सभी आदिवासी समुदायों को समान नागरिक संहिता यूसीसी से बाहर रखा ताकि उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यूसीसी से आदिवासियों के किसी भी अधिकार का हनन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे भारत के आदिवासियों को यह संदेश दिया था कि ये देश उनका है और कोई भी उनके जंगलों पर कब्जा नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया है कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर तक पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रही हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 3:11 और 17 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। इस समय का सफर जिसमें रात्रि काल से भोर काल तक का सफर हम सभी तय करते हैं और कई बार यूं मतवाली हो उठती हैं ये आंखें कि जैसे यादों का समा बंध गया हो और फिर उन्हीं सी भी हो जाती है। नींद न आने के कई कारण भी बसते हैं, जी हाँ, या ऐसा भी होता है कई बार नींद से एकदम से अचानक जागते हैं और वापस नींद नहीं आती, यानी काल एक लेकिन एहसासात अलग अलग। हाँ, ये बात जरूर कि ये वक्त अपना, सिर्फ अपना, इस समय का।

0: मुकेश और गीता दत्त के स्वरों से सजा ये गीत चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया था। साथियों, मजरू सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम हम मतवाले नौजवान, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1962 में।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: मित्रों, हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी सफर में एक दूसरे के हमराही बनते हैं और इस सुरीले सफर के हमराही हैं हम सभी। और जब हमराही अच्छे हों तो सफर जीवन का हो या कुछ घंटे, मिनट या लम्हों का, कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और जब इंतजार के लम्हात खत्म हो जाते हैं और कहिए कि इंतजार की यात्रा समाप्त हो जाती है और मनभावन साथी मिलता है तो इस तरह के गीत हम गाते हैं।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत कालीघाटा फिल्म से अभी आपने सुना। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1951 में। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। साथियों, जब सपने सच हो जाएं तो खुशी की चमक चेहरे पर सच ही जाती है, लबों पर गुनगुना उठती हैं तराने। और वैसे भी जब हम एक बार किसी को देखते हैं और वो दिल में बस जाता है और आंखों में भी तो बस जाता है। जी हाँ, उसी तरह की बात कहता ये तराना।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों से सजा ये गीत था। रवि का संगीत था शकील बदायूं ने की लिखी रचना। फिल्म का नाम घराना, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1961 में।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे के स्वरों से सजाई ये गीत अभी आपने सुना दत्ता वाटकर का। दत्ता राम वाटकर का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम जब से तुम्हें देखा है। और आइए अब इस अगले गीत में सुनते हैं क्या कहा जा रहा है।

आशा भोसले मोहम्मद रफी की स्वर उसी सजा ये गीत गृहस्थी फिल्म से साथियों अभी आपने सुना 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। रवि का संगीत था, शकील बदायूनी की लिखी रचना थी।

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज उसी सजा ये गीत परछाइयां फिल्म से हमने लिया था 1972 रिलीज ये फिल्म। आर डी बर्मन का संगीत था मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना।
1: नब्बे वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
2: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
1: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
2: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 MHz पर। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं युगल नगमे। आज के इस कार्यक्रम में आप हैं मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ।

शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम लव मैरिज जो 1959 में रिलीज हुई थी। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों का सुंदर समन्वय था इस गीत रचना में।

सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर के स्वरों से सजाई जाएगी। तस्वीर फिल्म से अभी आपने सुना। 1967 रिलीज फिल्म, चितलकर रामचंद्र का संगीत, डीएन मधोक की लिखी रचना। और अब इनके दिल की बात भी जान लेते हैं जरा।

सुमन कल्याणपुर मोहम्मद रफी की आवाजों से सजाया ये गीत चांद और सूरज फिल्म से 1965 रिलीज फिल्म सलील चौधरी का संगीत और शैलेंद्र की लिखी रचना। साथियों ये थी आज के हमराही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। बता देते हैं वो फिल्मों के नाम जिनके गीत आपने हमराही कार्यक्रम में सुने। फिल्म हम्मत वाले नौजवान, काली घटा, घराना, जब से तुम्हें देखा है, गृहस्थी, परछाइयां, जल तरंग, लव मैरिज, तस्वीर और चांद और सूरज। इन फिल्मों के गीत आपने हमराही कार्यक्रम में सुने। और अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी मित्र नीता अग्रवाल को। नमस्कार। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र

0: डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया है कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थी। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से भी दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। एक्सटर्नल अफेयर्स

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है प्रातः के 4:11 और 7 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, जब सुबह की शुरुआत करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रार्थना हम जरूर करते हैं और करनी भी चाहिए, और धरती को नमन करना चाहिए, अपने ईश को याद करना चाहिए, अपने माता पिता गुरुजनों को याद करके दिन की यानी सुबह की शुभ शुरुआत करना चाहिए। तभी सारे दिन ही नहीं, सारे जीवन में खुशियां ही खुशियां खिलती रहेंगी।

खुशी और ऊर्जा से भरपूर ये गीत अभी आपने सुना, तीन सुंदर आवाजों का सम्मिश्रण लिए ये रचना लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें थी साथियों। रवि का संगीत था शकील बदायूं की लिखी रचना और फिल्म का नाम गृहस्थी जो रिलीज हुई थी वर्ष 1900

तरी सठ में। और अब अरुणिमा काल में सूर्य की लालिमा, उसका आरंभ बस होने ही लगा है। उसकी आभा विद्यमान है और हरी हरी घास है जहां कुछ चमक रहा है। क्या है, किसका है वो, किनको मिला?

0: लता मंगेशकर की आवाज से सजाई ये गीत परख फिल्म से अभी आपने सुना मित्रों। 1960 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। सलिल चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मित्रों, सुबह जब हम सोकर उठें और ये तुरंत भाई याद आ जाए कि हमारे प्रिय आ रहे हैं या उनसे मुलाकात होगी, तो इस अरुणिमा का महत्व और खुशी दोनों ही बढ़ जाते हैं। क्यों है ना।

0: सखी रॉबिन ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। 1962 रिलीजी फिल्म सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे के स्वर थे, रॉबिन बैनर्जी का संगीत था और योगेश की लिखी रचना थी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में आप हैं मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ। और अब देखिए ना, अरुणिमा काल आ चुका है, लेकिन कोई कह रहा है कि रात तो भाई ढलती ही नहीं है, क्योंकि इंतजार जो पूरा नहीं हुआ, इंतजार तो रहेगा ही जब तक कि वो आ नहीं जाते।

महेंद्र कपूर की आवाज से सजा ये गीत गुमराह फिल्म से अभी आपने सुना मित्रों। 1963 रिलीज ये फिल्म रही थी। रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से सजा ये गीत कोहिनूर फिल्म से था। साथियों 1960 रिलीज ये फिल्म नौशाद का संगीत था, शकील बदायूं ने की लिखी रचना थी।

राही हूँ, नया अंदाज डगर पर आया है बड़ा जीवन का सफर। निकला हूँ मैं अपनी मस्ती में, मालूम नहीं मंजिल है किधर। ये बढ़ते हुए बेचैन कदम आएगी, लगता है ठिकाना आने वाला है। कर लेना किसी से प्यार कहीं, दिल अपना दीवाना लगता है।

मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था और फारूक कैसर की लिखी रचना।

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत गृहस्थी फिल्म से अभी आपने सुना। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। रवि का संगीत था, शकील बदायूं की लिखी रचना थी। और अब इनके सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये। सवेरा तो हो चुका है, जी हाँ, अरुणिमा और भोर सुहानी के बीच का वक्त चल रहा है। ये क्या कह रहे हैं, सुनते हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना लाट साहेब फिल्म से। 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना। साथियों, जिस तरह जीवन के सफर में सुख और दुख की परछाइयां संग संग विद्यमान रहती हैं, हम परेशान भी होते हैं लेकिन उन कष्टों से उबरने की पूरी पूरी कोशिश भी करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन कई बार संबंधों में भी रूठ मनाई हो जाती है। जी हाँ, रूठ जाता है, कोई वजह कोई भी हो। अब रूठने मनाने का जो सिलसिला होता है, यदि हम रूठे को मनाएंगे नहीं या हम रूठे ही रहेंगे स्वयं, तो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। रिश्तों की जो डोर होती है साथियों, वो आपसी सामंजस्य, समझदारी, स्नेह, पारदर्शिता होती है। और अगर इस तरह की कोई बात हो जाती है तो भाई रूठने मनाने में क्या बुराई है।

लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों से सजा ये गीत आज का पंछी फिल्म से अभी आपने सुना और अब आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है ये गीत।

साथियों, अभी आपने सुना राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना, फिल्म का नाम अमर दीप। इसी गीत रचना के साथ आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापक

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
1: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो की यात्रा का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यात्रा समसामयिक संदर्भ में भारत और अमेरिका के संबंधों का महत्व उजागर करती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एक वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों की सतत भागीदारी और मजबूत करने की दिशा तय कर दी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीएसई ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। बोर्ड ने यह भी बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सके। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते लोगों को दोपहर के सबसे गर्म घंटों में घरों के अंदर ही रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है और बाहरी गतिविधियां काफी कम हो गई हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi yesterday. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 5:11 और 21 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सुप्रभात साथियों, जीवन के सातों रंग इन सभी रंगों से सजकर जब भोर सुहानी सुंदरता बिखेरती है तो ऐसा लगता है मानो सात रंग के सुंदर सपने बिखर गई हों, सज गए हों और बहुत ही सुंदर नजारे हमारे जहन में आते हैं। जरा उठकर तो देखें उन नजारों को, बहुत सुंदर नजारे होते हैं साथियों।

मोहम्मद रफी आशा भोसले के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना आराधना फिल्म से। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। सचिन देव बर्मन का संगीत था और वो लिखी थी

हेमलता और यसुदास की आवाजों से सजा ये गीत चितचोर फिल्म से अभी आपने सुना। 1976 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। रविंद्र जैन का गीत संगीत था।

0: बहुत ही सुंदर स्नेही भावों से सजा ये गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज, 1969 रिलीज फिल्म, सचिन देव बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी की लिखी रचना, फिल्म का नाम आराधना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस

महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।